जय सीताराम। तो लबना सोंजमन पिनबिरे नसिदि ननायने निंजब थुंजरे करुमजरे। जय सीताराम, जय सीताराम।

लेपाङमिङ बैसे कदल तमजरी अहानबद ताबीरसी असीम अमरजीत न सेरिंग सत्पा बिमल चारमंगसा ताबन सेरिंगबा लाइबक पै इमानंदी असुमना सेहुबा कदल तमजरी।

0: ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯂꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯦꯂꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯃꯥꯃꯨꯅꯤ ꯗꯣꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯔꯁꯥꯌꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯂꯧꯎ ꯄꯊꯥꯞꯇꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯧꯎ ꯄꯊꯥꯞꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯦꯟ ꯁꯣꯏꯜ ꯀꯟꯖꯔꯚꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯈꯥꯒꯣꯛꯄꯝ ꯁꯟꯗꯤꯞ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯄꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯅꯕ ꯅꯨꯡ ꯍꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯥꯇꯦꯅꯨ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ
1: ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯤꯆꯔ ꯑꯦꯂꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯇꯦꯁꯠ 2026 ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 11 ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯦꯄꯔ 1ꯅ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10:00ꯗꯒꯤꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ 12:30 ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯄꯔ 2ꯅ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1:30 ꯃꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯀꯣꯟꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ
0: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯚꯥꯠꯅꯥꯒꯔꯗꯒꯤ ꯕꯔꯥꯅꯥꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯁꯦꯕꯥ ꯖꯥꯇ꯭ꯔꯥꯁꯤꯡ ꯉꯔꯥꯡ ꯚꯔꯆ꯭ꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯗꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛ ꯌꯧꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯕꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯄꯊꯥꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯀꯤꯁꯥꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯁꯨꯔꯤꯌꯥ ꯘꯔ ꯌꯣꯖꯅꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना समझना देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली
0: नक्सल मंत्री राजनाथ सिंह ने हायरी नक्सल के मरी लेने वौसल थौरंग सिंह पैकेट पदा मफम सिंह दी असेंग सक्तम मसुंग जाति गोय बवाखल उन सिंह युम फमोइदन पांगथो कदबनी ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯗꯨꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯗꯨꯅ ꯁꯪꯁꯤꯟꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ ꯀꯨꯠꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯈꯛꯇꯅ ꯁꯦꯠꯅꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯋꯥꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯊꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯉꯄꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯁꯤ ꯄꯤ ꯔꯥꯙꯥ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯟꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯍꯪꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯕꯤꯁ꯭ꯋ ꯁꯟꯁꯥꯔ ꯍꯤꯟꯗꯨꯇ꯭ꯋ ꯀꯥ ꯀꯧꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯙꯥ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯟꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯕꯤꯀꯥ ꯁꯤꯡꯊꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯗꯦꯕꯤꯀꯥ
3: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯀꯤꯔꯟ IIT ꯃꯗ꯭ꯔꯥꯁꯇ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯨꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯁꯤꯑꯦꯝꯒ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥꯅ ꯑꯦꯁꯤꯌꯟ ꯒꯦꯝꯁꯀꯤ ꯋꯨꯁꯨꯗ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯒꯤ ꯄꯤꯂꯣꯡꯈꯨꯜꯗ KNAB-ꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯋꯨꯁꯨꯗ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁꯤꯌꯟ ꯒꯦꯝꯁ ꯃꯦꯗꯜ ꯊꯪꯅꯅ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯂꯧꯕꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ KNAB-ꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁꯇ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯔꯤ ꯁꯤꯔꯦ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯂꯦꯞꯇꯦ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯌꯥꯎꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯁꯤꯔꯦ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯩ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯅ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯀꯜꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯃꯀꯨꯏꯈꯨꯜꯗ ꯆꯔꯆ ꯌꯥꯎꯅ ꯌꯨꯝ 90 ꯃꯩ ꯊꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯀꯥꯟꯐ꯭ꯌꯨ ꯃꯦꯜꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯦꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒ IIT ꯃꯗ꯭ꯔꯥꯁꯇ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯨꯒꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯍꯨꯏꯌꯦꯟ ꯂꯥꯟꯄꯥꯎꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯏꯆꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯥꯌꯣꯟ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯏꯗꯤꯁꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯦꯜꯗ ꯐꯣꯡꯂꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯏꯆꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯦꯜꯗꯁꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯨ ꯀꯥꯗꯔ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯅꯧꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ

0: Tabire, Tangjam Sanahal Singh Kongba, Clarionet. Akas Banim Fight, Hausi, Delhi Taki Dileda, Hindi Amading Raji the Pau Amadi, Awang Nupuk Lam Gilba, Ing Raji the Pau Silung the Gileda, Matang Matangwina, Taba Pangbiragani.
1: मैं मुकेश कुमार बल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस कार्यक्रम में सेवा यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
3: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।
4: भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा और राजगिरा सदियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। इन्हें श्री अन्न के नाम से आज व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने के बाद श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
5: मिलेट्स, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की। रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
4: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
6: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
7: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
8: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
9: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है, ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
10: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, IT, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
1: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार 21 साल बाद वापस लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। आधुनिकतम नई तकनीकी ई बस सेवा से लगा करके सभी प्रकार की सर्व सुविधाएं, सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
2: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सुरचित सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री, जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। लोक सत्ते में है। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के पहली बार भारत में आयोजित होने को भी सुर्खी बनाया है। पत्र के शब्द हैं, भारत को मिली रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2032 की मेजबानी, UCI पुणे में करेगा आयोजन। गन्ने से जल्द तैयार होगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इससे जुड़े प्रोडक्ट को औपचारिक मंजूरी मिलने की खबर प्रकाशित की है। नवभारत टाइम्स ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमरीका की सेनाओं के बीच जारी सैन्य अभ्यास पर सुर्खी दी है, युद्ध अभ्यास में दिखी भारत US की जुगलबंदी। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की खबर है, दूसरी छमाही में श्रम बल में 5.4% बढ़ोतरी का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच कल अमेरिका में हुई बातचीत पर पंजाब केसरी लिखता है, ट्रंप का जिनफिंग से मिलकर काम करने का वादा।
0: धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 8वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा गांव की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार और कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 25 वर्षों का जन सेवा का सफर पूरा हुआ है। इसमें 3 टर्म उनके लगभग 13 साल मुख्यमंत्री के तौर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर का रहा है और पिछला 12 साल देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काफी अनुभव भरा रहा है। इस दौरान गवर्नेंस में काफी परिवर्तन हुए, आम जनता तक काफी लाभ की योजनाएं लाई गई हैं। इसी के तहत जन सेवा से देश सेवा सीरीज के तहत आज हम आपके सामने उपस्थित हैं और हम बात करेंगे कि पिछले लगभग 12 वर्षों में देश के गांवों में क्या कुछ बदलाव आया है और वो बदलाव से जो ग्रामीण है हमारे हैं वो कितने लाभान्वित हुए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डीएस मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत मिश्रा साहब आपका।
2: धन्यवाद।
1: और साथ में हमारे साथ एसपी सिंह भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा साहब आपके पास ही आता हूँ, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है सेक्रेटरी के तौर पर, केंद्र में काम करते हुए, राज्य में काम करते हुए आप बारीकी से समाज के अंतिम वर्ग के लोगों के साथ न जुड़े रहे बल्कि आपने काम किया। पिछले 12 वर्षों में अगर हम गांव की बात करें, क्योंकि गांव जो है भारत की विकास यात्रा में हमेशा से केंद्र में रहे हैं, तो पिछले 10-12 वर्षों में क्या कुछ गांव में आपको परिवर्तन देखने को मिला है?
2: देखिए, पूरा का पूरा राजन साहब, गांव के विकास के बारे में सोच में तब्दील हो गई है। पहले जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, पहले जैसे गांव को हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते थे तो गांव में एक खंभा लग गया, सरहद में खंभा लग गया तो मान लेते थे कि गांव इलेक्ट्रिफाई हो गया। सड़क गांव में कहीं एक जगह पहुंच गई तो गांव आपकी सड़क से जुड़ गई। कुछ लोगों को आपने मकान दे दिया इंदिरा आवास योजना में तो आप मान लिया कि उनको गांव में लोगों को मकान मिल गया। पानी के लिए हैंडपंप लगा दिया आपने तो हैंडपंप लगाने के बाद आपने मान लिया कि वहां पे हैंडपंप से सब आसपास के लोगों को पानी मिल जाएगा। अब उस सोच में बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। अब क्या है कि अब सेचुरेशन के तरफ, जैसे गांव में अगर सड़क जानी है तो गांव की जो भी वहां पे आवश्यक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, न केवल हर टोले को सड़क जोड़े बल्कि वहां पे जो बाजार है, वहां का जो स्कूल है, वहां का जो मंडी है, हर एक को गांव की सड़क ले जाकर के जोड़ दे। हर व्यक्ति को जो कि एक गरीब आदमी है उसके पास मकान नहीं है, हर एक के लिए आवास हो। जो जल है वो जल हैंडपंप से नहीं बल्कि हर घर में जल पहुंचे, यानी हर घर में नल हो और हर नल में जल हो। गांव में एक बहुत बड़ी समस्या लोगों को होती थी कि अब उनकी जो खेत बाड़ी है तो वो तो खसरा खतौनी था उनके पास
1: जी,
2: लेकिन जहां वो रहते थे उसका उनकी आबादी के इलाके का कोई भी स्वामित्व नहीं था। अब घरौनी जो स्वामित्व योजना है उसके तहत उनके घर का भी एक रिकॉर्ड हो और उसके माध्यम से अगर वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उनको लोन भी मिल सकता हो। तो एक पूरी पूरी सोच में परिवर्तन आ गया। मैं कहूंगा आप स्वच्छ भारत मिशन में जैसे पहले
1: जी,
2: अब मैं तो बहुत नीचे लेवल से एसडीएम से लेकर के मैं उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी तक रहा, पहले हम थोड़े से शौचालय बना देते थे, ये कहते थे गरीबों को शौचालय मिल जाएगा और शौचालय जहां बनता था वहां कोई भूसा रख रहा है, कहीं कोई बकरी बांध रहा है, कुछ और काम कर रहा है। अब लोगों के सोच में सुधार हो गया। मैंने एक प्रकार से जन आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो कार्यक्रम चला
1: जी,
2: उसमें 100% शत प्रतिशत सारे के सारे गाँव हमारे ODF ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। उसके बाद ODF प्लस हो गए। अब वहां पे वेस्ट के मैनेजमेंट की भी बात हो गई, वो भी काफी काम हो गया। अब वहां पे जो ग्रे वाटर होता है, जो उपयुक्त पानी होता है, उस पानी को भी उपयोग करके उसका लाभ लेने के लिए इसके बारे में, तो ये मुझे लगता है कि एक आमूल चूल परिवर्तन
1: जी।
2: और अभी मुझे लगता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का पिछला 10-12 साल का जो ये परिवर्तन आया है, अब आने वाले समय में इसको लेकर के, जैसे अब डिजिटल व्यवस्था भी गाँव में हो गई है, अब इसको लेकर के पूरी आर्थिक व्यवस्था जो गांव की हमारे एक आदर्श गांव बन सके उसके बारे में बड़ा काम होने वाला है।
1: मिश्रा साहब आपने बड़े अच्छे तरीके से क्या परिदृश्य में बदलाव आया है उसको चित्रित किया है। सिंह साहब आपके पास आते हैं, सोच में बदलाव आया है और जब सोच बदलती है तो समाज बदलता है और हम जानते हैं कि जब समाज बदलता है तो पूरा का पूरा देश बदलता है। जैसा मिश्रा साहब ने बताया कि दरअसल अब फोकस जो है केवल ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ही नहीं है कि एक दो सामान लग गया और हमने कह दिया कि जी वहां पर नल पहुंच गया या वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच गई या बिजली विद्युतीकरण हो गया। दरअसल जीवन

0: की गुणवत्ता और बेसिक सर्विसेज का सबको एक्सेस मिले, सबकी वहां तक पहुंच हो और वो उनके उपयोग में आए, यहां तक मामला पहुंचा है। आपने कई गांवों का दौरा किया है, रिपोर्टिंग के दौरान किया है और संपर्क में रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो गुणवत्ता में परिवर्तन आया है गांवों में, लोगों की लाइफस्टाइल में, उससे देश को आगे बढ़ने में कितनी मदद मिली है?
1: देखिए, देश में ग्रामीण विकास हर सरकार की प्राथमिकता में रहा होगा, लेकिन सोच का, जैसे भी मिश्रा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो सोच में परिवर्तन आता है कि आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, सरकार कैसे पहुंचे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में गांव गरीब ही रहा है। गरीबी क्यों है और गांव की स्थिति क्या है? गांव उसे कहते थे जो कनेक्टिविटी का अभाव हो, जहां पे पक्की छत वाले किसी के पास घर न हो, मतलब बुनियादी सुविधाओं का एक तरह से अभाव होता था। उन सारे अभाव किया, उस जो अंतर है उसे कैसे पाटा जाए, ये काम बखूबी उन्होंने किया है। चाहे वो कनेक्टिविटी के अभाव में आप कह सकते हैं कि सूचना का प्रसार हुआ हो, इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, सड़कों के थ्रू, ग्रामीण सड़कें, हमें लगता है कि कोई गांव अब नहीं बचा है। 2028 तक ये प्लान बना है कि हर छोटे बड़े जहां कहीं भी हो, एक तो पुरानी सड़कों का उन्नयन हुआ, नई सड़कें बनी, हर गाँव और हर कस्बा और हर बस्ती को जोड़ने का काम किया। दूसरा काम की जो बुनियादी सुविधाएं गाँव को चाहिए होगी वो होती है हर सिर को पक्की छत, यानी हर एक को मकान देना, मकान किसे देना, जो मकान पक्का मकान न बना सके, ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उन्हें चिन्हित करके वहां तक ये लाभ पहुंचाना। दूसरा, मकान भी कैसा हो, मकान पहले भी इंदिरा आवास योजना के नाम पर मकान बना करते थे, अब मकान कैसे बनता है, मकान की वो बुनियादी सुविधाएं, उनको पानी की सुविधाएं, हैंडपंप से नहीं, नल से जल, जल जीवन मिशन इसका एक सबसे नायाब उदाहरण है, जो हर घर तक नल से और जिसमें शुद्ध पानी पहुंचाया जाए, तो एक तो हैंडपंप से मुक्ति मिलेगी और हर घर तक नल जाएगा। दूसरा, हर घर में लट्टू जले, लट्टू का मतलब बल्ब जले, यानी बिजली जाए, और हर घर तक बिजली जाएगी तो गांव में बिजली हो, यानी वो पूरा गांव विद्युतीकरण हो जाएगा। इसी तरह से स्वच्छता सबसे बड़ी समस्या गांव की थी स्वास्थ्य को लेके, और स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा जो कारण था खराब होने का, बीमारी होने का, गरीब होने का, कुपोषण सबसे बड़ी वजह थी, स्वच्छता का अभाव, शौचालय का अभाव। तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक शौचालय बनाने का काम और उस शौचालय का प्रयोग करना, ये जो प्रवृत्ति में बदलाव, हमारे मिश्रा जी ने बहुत सही कहा कि प्रवृत्ति और सोच में जो बदलाव आया, हैबिट लोगों की चेंज हो गई कि नहीं, हमें बाथरूम में जाना है, हम शौचालय जो हमारे लिए बनाया गया, जो हमने बनाया अपने लिए, उसका उपयोग किया जाए, लोगों को यह बताना कि इससे कितना फायदा है, इसके न होने से कितना नुकसान हो रहा था। दूसरा, पानी, जल जनित बीमारियों का प्रकोप होता था, खासतौर से इस मौसम में देखिए तो पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार का एक जो टाइफाइड, मतलब जल जनित बीमारियों का एक तरह से प्रकोप होता था, अब उसमें कमी आई है। इवन देन कि लोगों के रोग नहीं होगा, कुपोषण नहीं होगा, तो गरीबी नहीं आएगी, गरीबी की बड़ी वजह यही सब थी। तो गरीबी को कम कैसे किया जाए और गाँव को कैसे उन्नत बनाया जाए, और हर घर में जो माँ बहने खाना बनाया करती थी वो उपले से, लकड़ी से, यानी धुआं, तो धुआं रहित चूल्हा यानी कुकिंग गैस LPG हर घर तक सिलेंडर पहुंचाना, उज्ज्वला योजना, ये ऐसी योजना है जिससे माँ बहने आज अगर कहें तो दिल से धन्यवाद देती हैं इस सरकार को, महिलाओं के लिए शौचालय और खाना पकाने के लिए उनको स्वच्छ गैस, जो LPG कनेक्शन और सिलेंडर मिला है। ये दो चीजें अगर कहें तो महिलाओं का उत्थान हुआ, सशक्तिकरण हुआ, उन्हें काम मिला। दूसरी चीज की आप कहेंगे कि मनरेगा जैसा काम गांव में, हर गांव में गरीब से गरीब, जो सबसे निचले तबके पे, जिसे कोई काम नहीं मिल सकता है या कोई काम करना चाहता है लेकिन उसके हाथ में काम नहीं था, गांव के लोगों के साथ है कि खेती के बाद कोई काम नहीं है, भूमिहीन मजदूरों के लिए तो और भी मुश्किल है, कोई उसके लिए काम नहीं है, ऐसे में उन्होंने क्रिएट किया, इस सरकार ने उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को काम दिया जाए, ये मनरेगा के तौर पर एक योजना लाई गई।
0: बिल्कुल, इन सब विषयों पे सिंह साहब हम अलग से बात करेंगे। आप दोनों ने एक 360 डिग्री पिक्चर, जो गाँव की सोच में बदलाव आया है, लोगों की जो प्रवृत्ति में बदलाव आया है, इस पर हमने चर्चा की। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है, इस पर थोड़ी डिटेल में अब हम चर्चा करेंगे। दरअसल ग्रामीण भारत में खुले में शौच की समस्या जो थी, केवल एक स्वच्छता का विषय नहीं थी, बल्कि स्वास्थ्य, महिलाओं की गरिमा और बच्चों के भविष्य से भी जुड़ी हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने ग्रामीण जीवन में कहें तो एक तरीके से बिहेवियरल और सोशल चेंज पैदा किया है, इसे आप कैसे बताएंगे?
2: बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2014 का वो दृश्य याद करी, जब उन्होंने कहा था कि पूरे देश को हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150 साल जब मनाएंगे जन्म दिवस का, तो सबसे बड़ी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी कि हम देश को स्वच्छ कर दें, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए। और तब लोगों को लगा था कि ये संभव ही नहीं है। आज आप देखिए लगभग 12.2 करोड़ से ज्यादा जो है शौचालय गाँव गाँव में बने हैं, करीब 3 लाख से ज्यादा कम्युनिटी शौचालय जहाँ पे कम्युनिटी का होता है उसके बने हैं। आज न केवल शौचालय ही नहीं बने बल्कि शौचालय का उपयोग हो रहा है, मैंने लोगों के व्यवहार में विचार में उनके परिवर्तन आए कि हम शौचालय बनेगा तो उससे क्या लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी चीज आपने कहा गरिमा, जो हमारी माताओं बहनों को सड़क पे जाना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था, उनको सांप से डर है, कोई उनकी सुरक्षा उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा से उसको कॉम्प्रोमाइज है, रात के शाम के वक्त या सुबह के वक्त वो जाती थी, दिन भर अपने पेट में उस मल को रखती थी जिससे बीमारियां फैलती,
0: पीड़ा में रहती थी।
2: तो आप सोचिए कि उसको लेकर के ऐसी तमाम सारी स्टडीज हैं जो स्टडी कराएंगे उसके बाद, अब लगता है कि इससे जो है हमारे जो मृत्यु दर है बच्चों का चाइल्ड डेथ के बारे में, 5 साल के डेथ के बारे में, लोगों के पोषण के बारे में, हर चीज में सुधार हुआ है। जो हमारी डायरियल डिजीजेस थी, इतने सारे बच्चों का डेथ होता था उसमें, जो मैंने वाटर बॉर्न डिजीजेस हुआ करती थी क्योंकि उनका जो फीकल स्लज था वो उससे मिल जाता था, तो उन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। अब जो इसके बाद सरकार ने न केवल ODF किया, 100% गांव तो ODF हो गए, ODF प्लस यानी उसको शौचालय न केवल बने बल्कि शौचालय का उपयोग भी हो, और उसके ऊपर जाकर के जो वेस्ट का मैनेजमेंट, आज हर गांव में वेस्ट मैनेजमेंट, जो वहां पे ग्रे वाटर है, ग्रे वाटर जिसमें तमाम सारे मच्छर पैदा होते हैं, इसको लेकर के मलेरिया से लेकर के तमाम किस्म की बीमारियां होती हैं, डेंगू की बीमारी होती है, उससे लोगों को निजात मिले। तो ये पूरा का पूरा एक स्वच्छता का अभियान जो चला लोगों के लिए अकल्पनीय है कि ऐसा सक्सेसफुल कार्यक्रम हमारे देश में चलाया गया और उसका रिजल्ट सबके सामने है।
3: बिल्कुल, स्वच्छता मिशन के साथ साथ सिंह साहब अभी आप जल जीवन मिशन की भी बात कर रहे थे कि सिर्फ एक हैंडपंप गाड़ देना किसी गांव में ही जल पहुंचाना नहीं था, लंबे समय तक ग्रामीण महिलाओं और परिवारों के लिए रोज पानी लाना जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा था, इसमें चुनौतियां थी और बहुत वक्त भी उनका बर्बाद होता था। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक जल नल से पहुंचाने के प्रयास ने ग्रामीण परिवारों खास करके महिलाओं के जीवन को बहुत आसान बनाया है, और गांव में हर घर में नल कैसे पहुंचा है और हर नल में जल कैसे आया है, आइए सुनते हैं जल जीवन मिशन पर एक रिपोर्ट।
4: श्रोताओं, बेहतर जीवन की शुरुआत कई छोटी छोटी जरूरतों से होती है, इनमें सबसे जरूरी है पीने का साफ पानी। गाँव में लंबे समय तक बहुत से परिवारों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था, खासकर महिलाओं को घर के लिए पानी लाने में काफी समय और मेहनत लगती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य है हर ग्रामीण परिवार के घर तक नल से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना। आसान भाषा में कहें तो पहले जिस पानी के लिए परिवार को घर से बाहर जाना पड़ता था उसे नल के जरिए घर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जल जीवन मिशन केवल पाइप बिछाने की योजना नहीं है, इसका उद्देश्य गाँव में पानी की नियमित और सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए गाँव में पानी के स्रोत, पाइपलाइन, पानी की टंकियों और दूसरी जरूरी सुविधाओं को विकसित किया जाता है। श्रोताओं, घर में नल से पानी आने का मतलब केवल सुविधा बढ़ना नहीं है, इससे परिवार का समय भी बचता है, बच्चों को पानी लाने के बजाय पढ़ाई और दूसरी गतिविधियों के लिए समय मिल सकता है, महिलाओं की रोजमर्रा की मेहनत कम हो सकती है और परिवार को घर के पास पानी उपलब्ध हो सकता है। इस काम में गांव के लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत और स्थानीय समुदाय पानी की व्यवस्था को बनाए रखने और उसकी निगरानी में भूमिका निभाते हैं, यानी पानी की सुविधा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि गांव के लोगों की भी साझा जिम्मेदारी है। हर घर बेहतर जीवन की बात करें तो इसके साथ कई दूसरी योजनाएं भी जुड़ी हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गांवों में स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांवों को बेहतर सड़कों से जोड़ने का काम करती है। ग्रामीण विद्युतीकरण और ज्योतिग्राम जैसी पहलें बिजली की पहुंच और आपूर्ति को बेहतर बनाने से जुड़ी हैं। वहीं स्वामित्व गांवों में लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति से जुड़े अधिकारों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की दिशा में काम करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर केंद्रित है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास पर जोर देता है। श्रोताओं, इन प्रयासों का उद्देश्य अलग अलग जरूर है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, गांव में रहने वाले परिवारों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके जीवन को आसान बनाना। जब घर तक साफ पानी पहुंचे, गांव तक सड़क पहुंचे, बिजली मिले, स्वच्छता की सुविधा हो और लोगों को अपनी संपत्ति तथा सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिले, तो गांव का जीवन भी तेजी से बदलता है। यही है हर घर बेहतर जीवन की भावना, जहां विकास का मतलब केवल बड़ी इमारतें या बड़े शहर नहीं, बल्कि गांव के हर परिवार तक जरूरी सुविधाओं की पहुँच भी है।
0: आपको क्या लगता है कि नल का कनेक्शन देना तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ही, उसके साथ नियमितता और पर्याप्त के साथ गुणवत्ता वाला पानी भी उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी सफलता रही है सरकार की। अब जल जीवन मिशन के सामने क्या कुछ बड़ी चुनौती है या अगला स्टेप क्या है?
1: देखिए, पानी पहुंचाना एक है, लेकिन पानी तो पहले भी लोग पिया करते थे, बिना पानी के तो कोई जी नहीं सकता। पानी पहले भी पहुंचता था, लेकिन शुद्ध पानी पहुंचाना और पर्याप्त पानी पहुंचाना, जितनी जरूरत है एक व्यक्ति की 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। और नल से जब पानी जाएगा टैंक में चढ़ के, वो साफ होगा और स्वच्छ पानी जब लोगों के घर तक पहुंचेगा तो उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर होगी, स्वस्थ होंगे वो। मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो जल जनित बीमारियां होती हैं, जो पानी जम जाता है उससे मच्छर पैदा होते हैं और पानी में कुछ ऐसी चीजें चली जाती हैं, ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरियल और फंगल चीजें चली जाती हैं, अगर आपके पेट में चली जाए तो डायरिया हो जाए, ढेर सारे तरह के रोग होंगे। और अगर विपत्ति आनी है और गरीबी आनी है जिसको कहते हैं ना, तो वो उसके लिए अगर रोग हो जाए, किसी को बीमारी हो जाए, तो वो अपने आप गरीब हो जाता है, गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा। तो अगर स्वास्थ्य को ठीक कर दिया गया तो एक पानी शुद्ध दे करके इस सरकार ने लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है इस सरकार ने, कि कम से कम बीमारी नहीं होगी और गरीबी से निजात मिलने में होगा। दूसरा, बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं होंगे और हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, हमारे ग्रामीण बच्चों की उत्पादकता बढ़ेगी, हमारी सोच बढ़ेगी। तो जो ये सोच थी सरकार की पानी को लेके, वो सोचिए कि 81% गांव तक, इतना बड़ा देश जिसमें 6.5 लाख से ज्यादा गांव हो, और अगर देखा जाए तो बस्तियों को अगर गिनती कर लिया जाए तो हैबिटेट्स को तो ये करीब 10 लाख के आसपास संख्या होगी, और जरा समझिए 2.5 लाख के आसपास पंचायतें हैं, और इनमें 81% 82% लोगों तक नल का सप्लाई की लाइन बिछ गई, और हमें लगता है कि 70% से 75% तक पानी सप्लाई भी होने लगा है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में हम सबको पानी नल से देने लगेंगे। नल कहने में बड़ा आसान सा दिखता है, लेकिन कितना खर्च हुआ होगा, कितनी बड़ी सोच रही होगी। और इसका प्रयोग प्रधानमंत्री ने, जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्रित्व काल में अपने गुजरात में इन्होंने इसको लागू करके देखा, जहां पर वाटर डिफिसिट स्टेट्स है, जहां पर पानी की कमी, पीने की पानी की कमी, सिंचाई की कमी, हर तरह के पानी की कमी थी, शुद्ध पानी जल की तो बड़ी मुश्किलें थी। उस स्टेट को नर्मदा बांध से सरोवर, इतने बड़े बड़े बांध बने और नदियों में जो बरसात का पानी हुए, उसे रोक रोक करके जगह जगह चेक डैम बना के वहां से बिजली पैदा करना, पानी को साफ करना, टैंक तक पहुंचाना और साफ कर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना, लोगों के खेत तक पानी पहुंचाना, यानी कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है गांवों की। तो गांव को लेके जो कांसेप्ट हमारे प्रधानमंत्री का है, वो हमें लगता है कि बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा नेता मिला है। अभी एक बात और कह रहे थे मिश्रा जी, मैं कहूं देश का नेता खुद झाड़ू लेके अगर मैदान में उतर जाए कि सफाई मैं करूंगा, तो यह देश स्वच्छ ही होगा। और देखिए कितनी सफाई हो गई कि कोई व्यक्ति जरा सा भी हिचकता नहीं सफाई करने में। आप जरा गाड़ी में आप कभी चल रहे हो, बिहेवियरल चेंज कैसे आता है, हमें नहीं लगता कि आप कोई चीज, एक कागज का टुकड़ा भी एक खिड़की से नीचे कोई फेंकता हुआ मिल जाए, अगर कोई फेंकता हुआ मिल जाए तो पीछे वाली गाड़ी जाकर के उसे रोकती है, क्यों ऐसा किया, उसे अपराध बोध होता है। इस तरह की सोच में परिवर्तन, प्रधानमंत्री या इस देश का जब नेता इस तरह का बिहेव करता है, इस तरह का लीड करता है, तो आम जनता तक बात पहुंचती है और लोग उस पर अमल करते हैं।
0: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बिल्कुल सही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आज हम ये नजारा नहीं देखते कि गाड़ी से किसी ने केले का छिलका फेंक दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया, तो ये स्वभाव में जो परिवर्तन आया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या हित में नहीं है आम जनता के, ये बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज है। और साथ में मिश्रा जी, आपसे महत्वपूर्ण सवाल अब मुझे ये पूछना है कि 2047 में हम विकसित भारत का लक्ष्य देख रहे हैं, उसे प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं, और गांवों की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है, बिजली गांवों में पहुंचाया जाना, क्योंकि डिजिटाइजेशन हो चुका है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, अगर बिजली पहुंचाने की सोच सरकार की आज से 10 साल पहले नहीं होती तो आज शायद गांव में हर हाथ में मोबाइल नहीं होता। तो बिजली की उपलब्धता गांवों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को
3: किस तरीके से बदला है, इसे आप कैसे देखते हैं?
2: देखिए, इसके लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी, दोबारा मैं फिर आपको ले जाऊंगा 15 अगस्त के स्पीच में जो उन्होंने कहा था कि देश में ऐसे तमाम सारे गांव हैं जो आज भी जो सरकारी डेफिनेशन है उसके मुताबिक वहां पे बिजली नहीं पहुंची है, तो कुछ जगह तो बिजली पहुंच भी नहीं सकती, इतनी दुरूह जगह पे पड़े हुए, तो उसके तो हमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की जरूरत है जहां पे बिजली नहीं थी, और उसको अप्रैल 2018 तक सब जगह 100% बिजली पहुंचा दी गई। अब सवाल है बिजली पहुंचाना सरहद में, उससे क्या गांव में बिजली लोगों को मिलने लगती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। कुछ लोगों के पास बिजली का जब खंभा ले जाकर के उनको अपने घर में बिजली लेने के लिए, गांव में कुछ दो चार लोग जो संभ्रांत लोग हैं उन लोगों के पास बिजली पहुंच जाती है, बाकी सब लोग इससे वंचित रहते हैं। एक पूरी मुहिम चली सौभाग्य योजना, उस सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली पहुंचा रहे, जैसे हर घर में नल और हर नल में जल है तो हर घर में बिजली और हर बिजली में से बल्ब उसको जलेगा, मैंने हर घर में जो बच्चे, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, देखे छोटे बच्चे थे हम ढिबरी में पढ़ते थे
3: जी,
2: लालटेन में पढ़ते थे, अब लालटेन ढिबरी से पढ़ने से पढ़ तो लेते थे लेकिन हमारी

0: वो अगले लेवल पे जो ग्रामीण उद्योग है वो इलेक्ट्रिफाई हो जाएंगे। जब घर में बिजली पहुंचेगी तो तमाम सारी और चीजें जो हमारे सुख सुविधाएं की चीजें हैं, क्यों शहरी इलाके में लोग रहे, उनके लिए अगर उनको टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध हो, उनको जो है अन्य सुविधाएं जो बिजली से चलती है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, गाँव में क्यों नहीं उपलब्ध हो। बच्चे जो तमाम सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब बिजली पहुंच गई तो वहां के माध्यम से आज डिजिटली बहुत सारा जो कार्यक्रम होता है वो सारे के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अब गांव में जो पीएससी है वो गांव के पीएससी को सीधे कनेक्ट करके उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो बिजली ने पूरी जिंदगी में सुधार कर दी, ग्रामीण व्यवस्था में सुधार कर दी, और ये हमारा जो लाभ मिला। और मुझे लगता है इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है जो गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने वहां एक ज्योतिर्ग्राम योजना
1: की। जी जी
0: उस ज्योतिर्ग्राम योजना में क्या किया उन्होंने कि ग्रामीण का जो एग्रीकल्चर का फीडर है उसको जनरल फीडर से अलग कर दिया। और फीडर के अलग करने से क्या हो कि बिजली का सही प्रकार से आप उपयोग करने लगे, उससे आपको घर भर में बिजली जो है जो 8-9 घंटे मिलती थी वो 20-21 घंटे बिजली मिलनी चालू हो गई, तो बिजली की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। आज तो बहुत सारा जो बिजली के नाम पे आज सोलर लाइट तो इतना उपयोगी हो गई गांव गांव में, जो है गांव में सोलर लाइट उपयोगी। पहले हम लोग जो सोलर से केवल कुछ कुकिंग का काम कर लेते थे, सोलर के कुछ लैंप को लालटेन के तौर पे उसका यूज कर लेते थे, आज सोलर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हथियार बन गया है। सोनभद्र जिला जो है इतना ज्यादा दूर दूर तक वहां पे गांव फैले हुए, बहुत सारे जगह बिजली के खंभे वहां नहीं पहुंच सकते, पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, काफी उसमें एक्सपेंस होगा, बट सोलर के पहुंच करके सोलर के माध्यम से बहुत सारी चीज कर सकते हैं। वो गोबर गैस को यूज करके इसको कर रहे हैं, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव जो हमारे लोगों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
2: सिंह साहब, जैसा अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 13 वर्षों का उनका वहां का अनुभव रहा, उससे उस अनुभव को जो उन्होंने यहाँ पर कई योजनाओं में लागू किया है, एक गवर्नेंस के तौर पर कहें, योजनाएं बनाकर कहें, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि स्वच्छता हो गया, पानी मिलने लगा, बिजली पहुंच गई, लेकिन गांव की एक्सेसिबिलिटी अगर सड़क ना रहे प्रॉपर तरीके से तो फिर कैसे काम चलेगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो गांव को बाजार से जिसने जोड़ने का काम किया, इसके बारे में आपकी क्या राय?
3: देखिये, गाँव की सबसे बड़ी मुश्किल, मैंने कहा ना, सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति थी कनेक्टिविटी का अभाव, चाहे सड़कों का अभाव हो चाहे संचार साधनों का अभाव रहा हो, ये दोनों अभाव से कटा हुआ जो एरिया होता था हम उसे गांव बोल दिया करते थे। तो जो कनेक्टिविटी को तैयार करने का सबसे बड़ा मुद्दा था, हमारे 2000 में ही अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ग्राम सड़क योजना करके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना करके योजना चलाई थी, और उसे जो 1, 2, 3, 4 चरणों में ये पूरे देश में बनी, आज कह सकते हैं कि करीब करीब 7-8 लाख किलोमीटर से ऊपर की बन चुकी है हमारी सड़कें। तो जरा समझिए कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी सड़कों का जाल बिछ गया, उससे फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि गांव में जो खेतिहर किसान, छोटा किसान है, मान लीजिए थोड़ी सी सब्जी उगा लिया, थोड़ा दूध या कुछ और अपना तैयार कर लिया, और जो ऐसी चीजें जो बाजार में बिक सकती हैं तो वो अपनी साइकिल पर, अपने मोटरसाइकिल पर, अपने संसाधनों से, अपनी गाड़ी से, रिक्शे से, जो भी उसके पास साधन है, या किराए के ट्रैक्टर से, वो बाजार को पहुंचा लेता है, तो उसको एक काम मिल गया। दूसरा सबसे बड़ी फायदा यह हुआ कि स्वास्थ्य का, मिश्रा जी ने कहा कि अभी तो डिजिटली कनेक्ट होकर के हम कहीं से भी कनेक्ट होकर के हमें सुविधाएं मिल जाती हैं। हम कहते हैं कि गांव का आदमी, मुझे वो दिन याद है कि जब लोग बीमार होते थे तो सड़क नहीं होती थी, तो अब चारपाई पर लेकर के जो भी अस्पताल या डॉक्टर होता था उससे इलाज कराते थे। आज स्थिति नहीं है, आज स्थिति यह है कि आप किसी भी 100-200 किलोमीटर तो बड़ी आसानी से आप यात्रा कर ही सकते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, क्योंकि सड़कों की गुणवत्ता इतनी बढ़िया है कि हमें लगता है कि जो PMGSY की सड़कें हैं वो किसी भी शहर की सड़क से कमजोर नहीं है, क्योंकि जो इसका मानक है बनाने का वो बड़ा सख्त है, जो एजेंसी बनाती है उसी को 10 साल तक के लिए मेंटेनेंस का भी होता है, उसका पेमेंट रोक लिया जाता है, कुछ तभी दिया जाएगा जब वो मेंटेनेंस कंप्लीट करेगा, मेंटेनेंस का हिस्सा भी उसका जोड़ दिया जाता है। यानी इतनी वैज्ञानिक तरीके से ये सिस्टम बनाया गया है कि उसमें बेईमानी की चांसेस बहुत कम है।
2: आपने मिश्रा जी देखा होगा कि लोगों के पास अपनी संपत्ति होती है, अपना जमीन होता है, लेकिन प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स उनके पास बहुत स्पष्ट नहीं थे, तो स्वामित्व, गांव में संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व योजना जो है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें।
0: देखिए, स्वामित्व योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि गांव में जो खेती वाली जमीन होती है उसका तो खतौनी है, खसरा है, उसका नक्शा बना हुआ है, अब तो आज वो सारा का सारा डिजिटाइज भी हो गया है, लेकिन जो आबादी की जमीन थी, आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड किसी के पास नहीं था, नतीजन लोगों की आपस में लड़ाई होती थी, मैं तो देखता था फौजदारी होती थी, आज उनको इंडस्ट्री लगानी है, घर पे अपने कोई नया काम करना है, तो उसके लिए उनके पास अगर रिकॉर्ड नहीं है तो फिर वो बैंक से लोन भी नहीं ले सकते। आज जो देखिए जैम का जो सबसे बड़ा जो ट्रेनिटी आई है, तो जनधन योजना में हर आदमी का अपना खाता हो गया है, लेकिन खाते में बैंक वाला आपको लोन नहीं देगा आपका रिकॉर्ड नहीं है, तो ये जो प्रारंभ किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व की योजना, जिसको हम लोग घरौनी भी कहते हैं, खतौनी

0: कहते हैं जो खाता से हो गया, घरों नहीं कहते हैं, घर से हो गया। इसमें ड्रोन के द्वारा सर्वे करके पूरे गांव का सर्वे कर लेते
1: हैं। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल,
0: बिल्कुल बिल्कुल, ड्रोन से सर्वे करते हैं, वहां पे नीचे हर एक का जो लाइनिंग खींच देते हैं उसका सर्वे करते हैं, उसकी फिर ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं, और ग्राउंड ट्रूथिंग करने के बाद गांव सभा का मीटिंग बुला करके वहां पे सबको बुला करके दिखाते हैं, और दिखाकर जब सब सर्टिफाइड हो गए तो उसके बाद उनके जो है इसके जो स्वामित्व के जो डॉक्यूमेंट है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में जब मैं मुख्य सचिव था इसको मैंने बहुत टॉप प्रायोरिटी लिया। आज अगर देखें कि पूरे देश भर में लगभग 3 करोड़ के आसपास, 2.7 करोड़ के आसपास जो आज रिकॉर्ड लोगों को बढ़ चुके हैं, जिसमें से केवल उत्तर प्रदेश में ही केवल 1 करोड़ से ऊपर रिकॉर्ड बढ़ गए। उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट मैं कह दूंगा 90% हमारे गांवों में इसका काम पूरा हो चुका है, इसके जो रिकॉर्ड लोगों को बढ़ गए हैं या बढ़ रहे हैं। तो इसका जो लाभ आने वाले समय में, क्योंकि हमारे गांव की व्यवस्था जो आपने कहा कि शहरों से लोग जाकर के गांव में रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अच्छी जलवायु है, शुद्ध जल है, शुद्ध पानी है, शुद्ध वातावरण है, और वहां रह करके आप अपनी जिंदगी का एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। वहां पे भोजन के लिए भी आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड आज आपको मिलेगा। आज जो गांव और शहर को जो जोड़ा जा रहा है, जो कि दो शहर हमारे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, शहरों की जरूरतें बहुत बढ़ रही हैं, तो वहां पे अब गांव में ऐसे प्रोडक्शन होने लगे जो कि शहरों की आवश्यकता है। अगर होटल में कोई या वहां पे रेस्टोरेंट में अगर कोई किसी प्रकार की सब्जी का एक्सोटिक उसका यूज होता है, अब वो गाँव में उसका प्रोड्यूस होने लगा। गांव में जो आबादी कम हुई उनको शहर में जाकर उनको नौकरी मिल गई, लेकिन वो गांव से गांव में प्रोडक्शन करते हैं उसको शहर में ले जाकर उसको बेच देते हैं। तो ये इसमें जो स्वामित्व योजना जो है, जो घरौनी योजना, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे ग्रामीण भाई बहनों को मिला है,
1: और खास करके महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, उसमें पहला नाम मैंने मकान की मलकिन तो महिला ही है, उसके बाद पुरुष का नाम है, तो महिला का नाम सबसे पहले रहता है।
1: सिंह साहब, हम पीएम जनमन की बात अब आपसे करेंगे। दरअसल भारत के कुछ सबसे वंचित समुदायों तक बेसिक फैसिलिटीज पहुंचाना अभी भी चुनौती रही है। पीएम जनमन ने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी PVTG के विकास के लिए किस तरीके से नीतियां बनाई, किस तरीके का अप्रोच किया?
2: प्रधानमंत्री ने देखा कि वो वंचित क्षेत्र, वो क्षेत्र जो दूर दराज में बसे हुए हैं, जिन दुर्गम क्षेत्रों में जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिनका कोई ध्यान नहीं रखने वाला था, सरकार तो बहुत दूर की बात, सरकारी अफसर वहां जाने को राजी नहीं, कोई भी आदमी जाने को तैयार नहीं। अब ये दिल्ली के नजदीक आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मेवात का क्षेत्र है, हरियाणा में कोई वहां टीचर जाने को तैयार नहीं होता कोई, मतलब ऐसे क्षेत्रों में जिनका, खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों में, ऐसे जिलों को, ऐसे ब्लॉकों को, ऐसे गांवों को प्रधानमंत्री ने बाकायदा चिन्हित कराया, हर कलेक्टर से रिपोर्ट मांगा कि ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव और ऐसे ब्लॉक कहां कहां हैं जहां पे सुविधाओं का, खासतौर से बुनियादी सुविधाओं का जहां अभाव हो, ऐसी जगहों को चिन्हित करने के बाद वहां पर स्पेशल मुहिम के तौर पर स्पेशल अभियान चला के उन सुविधाओं को बहाल कराने का काम कराया है प्रधानमंत्री ने। जितनी योजनाओं की हम लोगों ने चर्चा की है, चाहे वो नल से जल हो, बिजली की सप्लाई हो, ये सारी चीजों की उपलब्धता कैसे वहां तक पहुंचाई जाए, ये सुविधा उनको विशेष अनुदान के तौर पर, किसी की कटौती नहीं की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल तौर पर दिया, और वहां पर ऐसे कलेक्टर्स और ऐसे अधिकारी लगाए गए जिनको बाकायदा दिया गया टारगेट कि इन एरिया का हमको हर हाल में बेहतर स्थिति चाहिए, ये कम से कम देश के बाकी हिस्से के बराबर के लोगों तक पहुंचे, और इसका इतना बढ़िया रिजल्ट है कि इससे एजेंसी आएगी, यहां पर कभी रिसर्च होगा तो लोग सोचेंगे भला बताइए पहले सुदूर गांव तक ये सुविधा पहुंच गई, ये इस देश में भी संभव है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होगा नेता होगा वही पहुंचा सकता, उसकी सोच पहुंचा सकती है।
1: तो मिश्रा जी से मैं यही सवाल पूछता हूं कि आप अपनी जमीनी अनुभव को बताएं PVTGs के लिए।
0: नहीं, PVTG देखिए, इट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब अगर हम ट्राइबल्स की देखें तो हमारी अनुसूची जो है उसके मुताबिक 705 ट्राइबल ग्रुप्स है, इनमें से 75 ऐसे PVTG जो कि हमेशा हर चीज से वंचित रहे, चाहे उनकी शिक्षा हो, उनका स्वास्थ्य हो, किस्म किस्म की बीमारियों से जूझते रहे, स्वास्थ्य हो, उनके लिए आवास हो, उनका न्यूट्रिशन हो, उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हो। उत्तर प्रदेश में, मैंने उत्तर प्रदेश में बहुत कम ट्राइबल्स है, ज्यादा ट्राइबल तो हमारे उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, वहां पे ज्यादा ट्राइबल्स, राजस्थान में ट्राइबल्स है। उत्तर प्रदेश जैसे जगह में भी ऐसे तमाम किस्म के जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये जो 75 ग्रुप सेलेक्ट किए गए, इनके बारे में इनके एक फोकस अटेंशन सरकार का, ताकि इनको 100% सैचुरेट कर दे। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पढ़ा लिखे ना हो, किसी को जो है स्कूल न जाता, कोई ऐसा ना हो जिसको स्वास्थ्य की वजह से समस्या हो, उनकी जो है न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो, तो हर चीज को पूरा तरह से एड्रेस किया गया। इनकी कनेक्टिविटी भी नहीं थी, मैंने एक तरफ पीएम ग्राम सड़क योजना हो रही थी तो ये तो इतने दूर थे कि इसको उनका सोचता भी कोई नहीं था। अब इन गांवों को 100% के हर टोले को कनेक्टिविटी भी दी गई, इनके हर घर में बिजली पहुंचाई गई, तो जो सरकार के हर घर में जल पहुंचाया गया, ये एक स्पेशल फोकस अटेंशन है हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से। पीएम जनमन योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, आज उसका लाभ इस स्पेशल ग्रुप को मिल रहा है।
1: बिल्कुल, तो एक तरीके से आप दोनों से बातचीत करके ये एक तस्वीर उभरी है कि भारत के गांव में बिजली से, पानी से, स्वामित्व योजना से, उनकी कनेक्टिविटी से पूरी की पूरी सोच जो है उसमें समग्रता में एक परिवर्तन आया है।
0: इसमें जोड़ूंगा जी, एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है
1: जी, वाइब्रेंट विलेज
0: पहले बॉर्डर डेवलपमेंट का उसको करते जी, थे जी। जो हमारे देश के सबसे अंतिम गांव होते थे, हम उसको कहते देश के अंतिम गांव,
1: वो पहला गांव क्यों नहीं है?
0: मैंने वहां पे जो सोच में परिवर्तन है कि पहले गांव में लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी हो, वहाँ टूरिज्म की फैसिलिटी हो, वहाँ पीने का पानी हो, वहाँ स्वास्थ्य का हर एक सारी सुविधा हो, ये कंप्लीट सोच में परिवर्तन लाना। कि गृह मंत्रालय भी इस प्रकार का काम 662 गांव में कर रहा है, जो कि चाहे वो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड लद्दाख का हो या उधर हिमाचल प्रदेश का हो, अरुणाचल प्रदेश का, ये पूरे बॉर्डर के जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर है उन सारे गांवों के ऊपर ये कार्यक्रम चल रहा है।
2: ये भी सोच का गांव की और बात बताऊं, ये गांव टूरिज्म के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। अब उनके रोजी रोटी का भी एक अच्छा साधन हो गया, क्योंकि वहां कनेक्टिविटी हो गई, सारी सुविधाएं हो गई। तो गृह मंत्रालय ने जो इनिशिएटिव लिया है प्रधानमंत्री के निर्देश पर, वो बहुत ही आगे बढ़ रही है और इसका बहुत फायदा मिल रहा है। वहां के लोगों का जीवन स्तर तो सुधरा। कुछ तो गांव ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ सिंगल गांव है, उसके लिए कोई कनेक्टिविटी का वो नहीं था, वहां नाव से जाया जाता था। हिमाचल प्रदेश के एरिया में कोई गांव है जिसके लिए इतना खर्च किया गया कि एक गांव के लिए इतना करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया कि इसकी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए और सारी सुविधाओं से किया जाए, ताकि इन गांवों को ये न लगे कि वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो ये इस देश के प्रधानमंत्री या इस सरकार की सोच देखिए कि आखिरी छोर पर बसा व्यक्ति भी भारत का अपने को मजबूती के साथ जोड़ सके, और यह देश अगर बधा रहेगा तभी सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री हैं, हमारी अच्छी सरकार है, हमें लगता है योजनाओं को जिस तरह लोगों तक पहुंचाने की योजना थी और पहुंच रही है, इसका लाभ आने वाले दिनों में और अच्छा से दिखेगा।
1: पिछले 10-12 वर्षों में भारत के गांव में जिस तरीके से सकारात्मक परिवर्तन आया है, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, और विकसित भारत 2047 की दिशा में अब जिस तरीके से भारत के गांव भी सहयोग कर रहे हैं, उसमें गवर्नेंस मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिया है वो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डीएस मिश्रा साहब और एसपी सिंह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 8वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा गांव की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार एवं कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ना लेपाक मियांग सेवा तौरप सही कुन्मंगा मपुंग फारपगी अखन्नब थोरम परें ताबिरे आकाशवाणी इम्फाल आउजिंग मुसंदोक सरी ngaiko takise

0: हेलो,
1: हेलो, तुम द्रिपरा
0: तुम जरूर है?
1: हिंग थी बस कड़ा फोन होने
0: खांग दिए हे हे तो
1: बस
0: पदुने तुम इन्हें हेत लगी।
1: बस
0: हेलो हेलो
1: मधु की मीटो आई थी कल मधु फू बस हो रही
0: अस
1: कोक यम सहले पुंग क्या तारे नोया तुम पुंग दौरे हाँ तमनबदौननेसे बी पी वाखलकदोरीको हे नंगी टेलीफोन सिमदो सेंदो सेंदोक्ति फाउब नंग स्विच ऑफ थम नत्रदी इमुंगसे कैसु नत्तबदुदा खंगब्रा हा नंगसु केतंग थावाई थावाई याम जोमंगरे बना
0: कदाई दे यारी नो
1: याम न पाइनिंग बदो आइन स्विच ऑफ थमु हाइबा नंग नंग करी गिया दे
0: ꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯗ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯣ? ꯀꯅꯥꯗꯅꯣ? ꯍꯥ ꯀꯅꯥꯗꯅꯣꯕ? ꯏꯁ ꯑꯣꯂꯥꯡ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯇꯣꯝꯗ ꯇꯨꯝꯒꯦꯀ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯐꯣꯟꯗꯣ ꯄꯦꯠ ꯄꯦꯠ ꯄꯦꯠ ꯄꯦꯠ ꯈꯣꯟꯖꯦꯟꯒ ꯅꯧꯊꯔꯗꯅ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯤꯡꯁꯦ ꯄꯣꯊꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦ
1: ꯑꯁ ꯅꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯣꯊꯥꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯦ ꯏꯃꯥ ꯇꯥꯅꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯌꯣꯕ
0: ꯇꯥꯅꯅꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯏꯁꯤ
1: ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥꯡꯉꯨ ꯉꯥꯡꯉꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯤꯁꯪꯁꯨ ꯆꯪꯉꯣꯏꯗꯕꯗ
0: ꯐꯣꯟꯗꯣ ꯊꯨꯒꯥꯏꯌꯨꯔꯣ ꯐꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯔꯒꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯖꯅꯤ ꯄꯪꯍꯧꯗꯤ ꯍꯧꯅꯒꯨꯝꯁꯤꯀꯣ
1: ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯏꯃꯥꯅ ꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕꯤꯅꯤ
0: ꯍꯣꯏ ꯕꯨꯡꯉꯣ ꯅꯪꯁꯦ ꯉꯥꯛꯇꯤꯉꯥꯏꯍꯦ ꯆꯨꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯒ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ ꯂꯥꯏ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯅꯪ ꯑꯣꯏꯔꯦ
1: ꯏ ꯏ
0: ꯅꯃꯥꯅ ꯄꯦꯟꯁꯤꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯏ ꯌꯨꯝ ꯚꯔꯥ ꯂꯨꯄꯥ 6,000,000 ꯈꯛ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯔꯣꯔ ꯄꯥꯏꯔꯕꯒ ꯁꯥꯔꯗꯅ ꯀꯔꯣꯔꯄꯇꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯀꯨꯝꯃꯔꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯉꯥꯏꯈꯣꯅꯦ ꯁꯛꯇꯥ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯅꯤꯒꯥꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯉꯛꯄꯨꯉꯛꯏꯅꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅꯣ
1: ꯅꯪꯒꯨꯝꯕꯤ ꯅꯪꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ
0: ꯑꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯆꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯗꯅ
2: ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯅꯣꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯣꯏꯕꯣ ꯀꯔꯤ ꯅꯣꯏꯕ ꯍꯥ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟ ꯈꯟꯅꯔꯁꯨ ꯑꯍꯤꯡꯗꯗꯤ ꯈꯟꯅꯔꯅꯨꯗꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯪꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯦ
0: ꯏꯃꯥ ꯍꯦꯟꯃꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯑꯍꯤꯡꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤꯒ ꯐꯣꯟꯗ ꯆꯨꯛꯂꯦꯞ ꯂꯦꯞꯇꯦ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ
2: ꯑꯣ ꯅꯨꯄꯥꯗꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯄꯨꯅꯦ 10ꯒꯤ ꯃꯄꯨ
0: ꯍꯦꯟꯅ
2: ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦꯒꯦ ꯍꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯪ ꯌꯥꯝ ꯈꯝꯕꯟꯒꯅꯨꯀꯣ ꯂꯦꯝꯊꯣꯛꯎ ꯂꯦꯝꯊꯣꯛꯎ
0: ꯑꯦ ꯍꯣ 10ꯒꯤ ꯃꯄꯨꯗꯣ ꯃꯧ ꯃꯧꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯥ 10 10 ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯒꯤ ꯃꯕꯨꯡ ꯃꯧꯄ꯭ꯋꯥ 10 10 ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯅꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯐꯨꯔꯔꯕꯗꯤ ꯍꯤꯡꯂꯔꯣꯏꯌꯦ ꯅꯍꯥꯟꯃꯨꯛꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯐꯨꯔꯝꯕꯗꯣ
2: ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯦꯃꯥ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯦꯃꯥ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯥꯡꯉꯤꯗꯀꯣ ꯅꯪꯁꯦ ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯍꯨꯟꯕꯤ ꯅꯣꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏ ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯍꯨꯜꯂꯐꯥꯎ ꯉꯥꯡꯗꯧꯔꯤꯕꯣꯔꯣ ꯅꯪꯕꯣ ꯍꯥ ꯅꯣꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏ ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯍꯨꯜꯂꯐꯥꯎ ꯉꯥꯡꯗꯧꯔꯤꯕꯣ ꯅꯪꯕꯣ
0: ꯏꯃꯥ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯃꯈꯨꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯡꯄꯣ ꯄꯣꯊꯥꯗꯦ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯦꯠ ꯄꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯒ ꯑꯝꯇ ꯇꯥꯗꯦ
2: ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯇꯥꯗꯕꯅꯤꯅꯅꯦ ꯉꯥꯡꯉꯨꯔꯅꯨ ꯋꯥ ꯃꯥꯡꯅꯅꯕꯅꯤ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯉꯥꯡꯉꯨꯔꯅꯨ ꯉꯥꯡꯉꯨꯔꯅꯨ
0: ꯍꯣ ꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯇ ꯄꯣꯊꯥꯕꯤꯌꯣ ꯃꯤꯅ ꯐꯣꯟꯗꯣ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯌꯦꯡꯖꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯛ ꯐꯖꯕꯣ
1: ꯑꯁ ꯒꯦꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ
2: ꯃꯄꯥꯗꯨꯅꯅꯦ ꯈꯣꯏꯅꯤꯡ ꯊꯧꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯟꯕꯤꯔꯝꯗꯅ ꯏꯁꯥꯁꯤ ꯂꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯝꯗꯜꯂꯦꯅꯦ

0: हेलो हेलो कना नो ना हेलो हेलो
1: अनीश तुम खराब रहा।
0: तुम करे नया कोई रे
1: टीवी द अनीश ओ बद आई हम कब करे इच्छा की नुंगाई बदो आई सरु यहाँ पर पंत्र
0: हाइनिंग बदो करीनो
1: माने ये लिबे लंगानु दो आई ने तामोने ये उहाई ब्रा
0: आई हाय दे माने खुमचेरी बा पाखुम सिंदो अशुम बने थम्मगे
1: नाइको तामो आईबु आईबु नाक पीरे रोइद्रा
0: नाक पी दबा हाय बसे अइंगोंदा मियामदा ख्वाइदेगी लुगो हंगने आई खंगे नंग ना इबु सुनुसी अतुबु नंगी पंग लुब थमोई दो वरक पंग मुदाबा अशोई बु खोंथांग
1: थाबो
0: आई ने सु नंगु याम ने नुसी तुक सब सावनिंग बगी सरु खै आरो बसु नंगबु अदुम नुसी असी हाइदुना सु नंगबु ngak pirabadi miyam na kari haini फिदम होइबे यारोइ तुंगद नुपी होइबे कयाना न तो उत्तम न रखने अदुबो पिकली बह अंगांग सिगी सुखल नंग लेना लेना हिंगना हिंगना पुपांग सुद बहाय बदो ओइरे मान तत्तन इमा कदाई चटकी हंगे होइ नंगी नाकता मा थंबई आई अदु मा मांगद ब माले नंगी नफम द एगी थाज ब मांगर
1: माधी माधी खरी मत खंग द ब्रा
0: खंग दे
1: ले बक साथ खब खबर द टीवी द
0: आई न टीवी यंगन दे खबर पहन दे अदु न खंग दे अदु बो सीधगी दी मान हंग बदा आई न करी पौखुम नो पीग दब खंग दे
2: मम्मा पापा
0: आई अनीस आई इपाक इपास सीधे ले कह दो रे मंग द मम्मा उरम में बा मंग द नंग उर में हरी सी ताबरा थम्मगे

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिंग निमित युंबा पुंग तरानिथोय तारे कंगला चैनल की अनिशुब थौरम परें संदोक पाउजरी संदोक चरीबा मेडियम वे मीटर चाहुम निफू दशमिक अमा किलोहर्ट्ज चानीपान मरीफुनिथोय हौजिंग मणिपुरीदा निमित युंबगी पाउ ताबिरसी।
1: आकाशवाणी इम्फाल गंगम गंथोयना पाउ पाजरी अहानबदा मरु ओइबा पाउ कामजोंग जिला दंगरांग मियै मरी हातखिबगी थौदोपु यानिंगदबा फोंदुना तांखुल नगालोंग नंगसे एउदगी कौखिबा पुंकुन मरी गिबन्ना उख्रुलमसुंग कामजोंग जिलागी महौसागी पुनसिदा चावना काइबा थोकले। एनईसीना सेल थादबा डेरी फार्मिंग प्रोजेक्टकी मखादा मणिपुरगी शेड्युल कास्ट फार्मर्सिंगदा नावपुरबी सनबिसिंग असि एंथोकदौरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीना हायरी मिपुं खुदिंमकना सरुक यारबतदा बिकसित भारत की पांदम फंगबा गमगनी अमसों मेक इन इंडिया थौरांग हौदोखिबा ङासी सही तरानिथोय मपुं फारे। तांखुल नगालोंग ङासी आयुक्तगी उख्रुल अमसों कामजोंग जिला यावना तांखुल ताबा मफम सिंदा कौखिबा पुं कुनमारी गि बन्ना जिला अनि असिगी महौसागी पुनसिदा चावना काइबा थोकले। ngarang nongthil kamjong headquarters ta gi kilometer 35 da leiba pilong da tangkhul phuruk ki miwei mari halamba bu yaning da ba phongdoktuna banna du kawbani ai khoi gi ukhrul paumi so thing simren hai khudakta korokpa banna sinamaram oiduna ukhrul amsung kamjong jila headquarters sing da kaithel amsung dukan sing thonglo nare lairik tamphom sing hangdre lambi da gari sendre miyam su yum yum da gi ithok thokna dre police ki paupala duna ai khoi gi paumi na hai थौदोक्थोखिबा मफम अदुदा कामजोंग पुलिस संसिंदुना हक्सांग सिंग अदु लोखलबा तुंगदा कामजोंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दा पोस्टमार्टम तौख्रे। ngasi nungthil pung ama makhai adwai da kamjong district headquarters da miyamna awaba phongdoklaba matungda hakchang sing adu imung manung da sinaraba yai hairi। manipur gi schedule caste farmer sing da nawpura bi sanbi sing yen thokpagi thorma ma ngasi nungthil pung ahum da imphal iski sanjen thong manak ta laiba veterinary complex ki farmers training hall da pangthokadauri। manipur sarkar gi directorate of veterinary and animal husbandry services manipur na sinba thorum adu northeastern council na sel thadaba dairy farming a way of life for schedule caste farmers of manipur haiba project ki makhada pangthokpani sanbi en thokpagi thorum adu da mukhyamantri yumnam khemchan singh sergya gani। imphal is jila gi mungjam da leiba educational and social upliftment organization na sinduna liquid bio fertilizer puthokpagi thorom ama hayang nungthil manipur press club imphal da pangthoklagani। thorom adu da csir nice branch lab lamphel pat imphal gi chief scientist dr s piro kumar singh amasung masak naiba miyoi kya saruk yagani। tangai phadana numit khuding gi sangba polam sing yauba potsei puba gari sama yang khai gi kanboi ama ngasi su jiribam da gi imphal jiribam lambi da imphal um da thorakle। aikhoi gi jiribam paumin hai gari sing adu gi manung da lpg tanker kunma thoi petrol kuni thoi amasung diesel kun thama thoi yauna tanker mar phuni thoi amasung cement hidak alu amasung sangom na jingba puba gari humphuni pan yauri।

0: हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
4: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
4: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम सावेनी जी का।
3: माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी, छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
4: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
3: नमस्कार, नमस्कार।
4: आपने आगे लिखा है, हमें उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार मिलकर इसे एक साथ सुनते हैं
3: जी।
4: बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
4: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
4: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
3: धन्यवाद आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के लिए।
4: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी
3: जी। श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ। अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार
4: जी। उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए सोचिए। चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं। वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है।
3: वो है स्टेथोस्कोप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
4: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में
3: जी।
4: श्रोताओं, तब तक चिकित्सा विज्ञान में यह समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है।
3: श्रोताओं, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था। फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक। वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
4: श्रोताओं, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। एक दिन की बात है, उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया
3: जी।
4: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे, तो दूसरे सिरे पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी।
3: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया। फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने पर रखा और दूसरा सिरा अपने कान के पास।
4: और फिर ये हुआ कि वे उछल पड़े जब उन्हें रोगी के हृदय की धड़कन पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। डॉक्टर लेनेक ने इस उपकरण को नाम दिया स्टेथोस्कोप।
3: ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपेन यानी देखना या निरीक्षण करना। बाद में लेनेक ने इसे और बेहतर बनाया। उन्होंने लकड़ी से बने नली नुमा उपकरण का इस्तेमाल किया।
4: बाद में इस पर बहुत बदलाव हुए। शुरुआती स्टेथोस्कोप आज के उपकरण से बिल्कुल अलग दिखता था। वो एक लकड़ी की कठोर नली जैसा था
3: जी।
4: लेकिन इस छोटे से उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया।
3: अब परिस्थिति बदल गई। डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे।
4: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया
3: जी।
4: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए। यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी।
3: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य ध्वनियां, इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
4: तो श्रोताओ, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा, लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी।
3: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस।
4: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। लिखिएगा जरूर। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
3: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
4: तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
3: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की चीं चीं की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काएं काएं करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी।

0: एक संत नदी में नहा रहे थे।
1: हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
0: उन्होंने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा।
1: अरे अरे, बिच्छू!

0: बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की बार बार कोशिश की।
1: अरे फिर चला गया।
0: बिच्छू हर बार डंक मारता और उनके हाथ से छूट जाता। संत लगातार कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल ही लिया।

0: किनारे पर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसने संत से पूछा,
1: बाबा आपने बिच्छू को क्यों निकाला? ये तो आपको बार बार डंक मार रहा था। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी।
2: बच्चे तुम ठीक कहते हो, तकलीफ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ से एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना। बिच्छू ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता।

0: बालक सोचने लगा।
1: अरे बाबा ने एक छोटे से जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाई।

लोगों का तो काम ही है भलाई करना। किसी ने कहा भी है, भला वही जो बुराई के बदले भी भलाई करे।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी आपके मित्र अजीत
1: और विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: ताबिरे एनसीईआरटी की तेंबांग लोइनना संदूक सब थौरम उमंग सतहजरीब थौरम परें कंगला चैनल की नुमिदांग वायरम पुंग तरुक बिनी निफू खुंगंग की थौरम दा तहन जगनी ना ताब की शक्ति वाटलब मियोई सिंगना थेंगनरीब खुदों चादब सिंग हाइबसिदा बविना हॉस्पिटल खवैशोईदा एसोसिएट कंसल्टेंट ईएनटी की थौ पुबिरीबी डॉक्टर संध्या लता युमलेम बोंगा एखुगी मिहुत गुरुमयम सोनियागा उन्दुन वरी साब थौरम पुथोप नोंथम बमरोमा। आकाशवाणी इम्फाल हौजिकताबिरसी हलो मणिपुर हक्सेल इगी मचल सिंदगी प्लेलेट खक्तमक लौबा हाइबसिदा एक्सपर्ट ओइना लेंसिनबिगदबी सीजा ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन सेंटर की मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर हेमापति सलाम थौरम असी सीजा हॉस्पिटल की तेंबांग लोइनना संदोकचब थौरमनी।
4: हलो मणिपुर ताबिर सिंह अहब तराम ओक्षरी सिराई नुमित ओइबना महुसागुम अदुमक हलो मणिपुर हक्सेल की थौरम लोखचरी खनजगदब हिरम अखोगी अंगांग मचुगी अकुंग मही एम उब हक्सांग चेलीब इसे खक्तमक करी मथोक तौरी अदु इसी तोंगान तोंगान मचल यावरीसे कमन मेन क्या कन्न खलुदब अदुमकपु मसिना हयेंग अना लयेंगी अदु करी करी की मतमदा इसिद यावरीब मचल अम उरीब यामना मरु उरीब मचल अम उरीब प्लेटलेट हायरीबसे कमदौना लौगदगे अनौब लेटेस्ट टेक्निक करी कमदौना लौबगे थौंग चिंब लयेंबद पीरिब कानबन चिंबगी मतांगदा इगी मचल सिंगदगी प्लेटलेट खक्तमक लौथोप सिंगल डोनर प्लेटलेट डॉक्टर सिंह एसडीपी हायरगन हेन खंगबिरे मतांगदनी हिरम सिगी मतांगदा हुजिक स्टूडियोदा लेंचिनदना मियामगी वाहंग पाउखुम पीबिनबगीदमकता लेबिरे सीजा ब्लड सेंटर एंड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेस सीजा हॉस्पिटल की मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज डॉक्टर हेमापति सलाम डॉक्टर चिल्लब कैथोपीदरी तरह नोचरी।
5: थैंक यू सो मच ऑल इंडिया रेडियो एंड ताबिर लिसनर
4: पुरमुखरी थौरम से मैं सरुक याबीनबीर डॉक्टर की सिंगल डोनर प्लेटलेट है प्लेटलेट खत्म लौटोपी थी मतंग खाबीरबीदी फोन नंबर से अहमद नोट तौशनगनी हांगदन थमजरे डायल तौबीरकला लेंसिनबीरिबा डॉक्टर दगी खंबिनिंबसिंग हांबिरक पयागनी निंसिंगजगे 9362327078 अमुक्तंग निंसिंगजगे 9362327078 हांगदन थमजरबनी डायल तौबा होबया अखैगे होबिरक पयारगनी डॉक्टर होगदोकचबसिदि अखैगे इसे अखोई मियोई बगी हक्सांग चेलीब इसे अखोइनदि अंगांग मचुगी अकुंग अखोई मही एम अदुखक्तम कमन मेननदि खंजै अदुना इगी कंपोनेंट मैम सिगी मरक्तगी प्लेटलेट न तौरीब मथौसे तोंगान तोंगान मचल मैम अम यावरी मसिद प्लेटलेट की मथौसे करिनो अदुगा मखल कया थोकन लेबगेम तता
5: हाइजके प्लेटलेट सेसी खोइगी ब्लड ता खोइगी अंगांगब द यावरीब सरुक मचल अमकनी सेल्स अमकनी अदुगा प्लेटलेट से खोइना मरु ओइब मागी फंक्शंस हायरगदी इ खकपद खोइदगी मरु ओइना ब्लीडिंग द स्टॉप तोबा ओर हेल्प तोबा सेल्स मखल अमनी अदुगा खोइगी रेड सेल्स हैबजे होल ब्लड अंगांगब एनी नेशन तौरब मतुंग अखोइना ब्लड सेंटर दा सेंट्रीफ्यूगेशन तौरगा हैबदी उंगगा मागी पार्ट से डिफरेंट पार्ट्स का खाइदोई हैबदी रेड सेल्स हैब मने प्लेटलेट ने देन मही प्लाज्मा हैब मने अदो मोगी मखन मखन मोगी फंक्शन से याम डिफरेंट ओय अदोना मागी मागी अखोइगी दरकार ओबे मतुंगिना अखोइना ब्लड सेंटर दा कलेक्ट तौरगा अखोइना थमी अदोगा प्लेटलेट सिगी मखल हायरगदी अखोइना ब्लड सेंटर दा एनी ब्लड सेंटर लैब मतमदा अनि थोन लै हैबदी रेंडम डोनर प्लेटलेट होल ब्लड तौरमब मतुंग दा डोनेशन तौर इजे कलेक्ट तौरकान सेंब एनी डोनर सेंब प्लेटलेट रेंडम डोनर प्लेटलेट कौरे।

ताबीरे सैसकपी थोकचों कमला की खोंजल दगी मणिपुरी मदमिसई सैसकपी सिगी अनिशुब खुदोल दा तामिनासी इराल सुसीबी रेंगासी नंगना असुमन सेहोबा मदमिसई खुदोल दौजरी।

ताबीरे सैसक पी थोकचोम कमला देवी मणिपुरी मतमी मथंग मथंग सैरेंखी मथंग सिटना अरुण कुमार नोमाइथेम राजेन यंगकोकपम अमदी अरुण कुमार नोमाइथेम मतांग तांकक लांथोकचबा मणिपुरी मतमी लोइजरे आकाशवाणी इम्फाल हौजिक लांथोकचरी वेस्टर्न म्यूजिक की थौरम।

0: ताबिरे वेस्टर्न म्यूजिक की थोरम आकाशवाणी इम्फाल हौसिक ताबिर से सकनाइरब सिंह की वारी द आई बी जे के रोलिंग की पुंसी वारी
1: जॉन कैथलिन रोलिंग मयाम ने जे के रोलिंग हायरग खंगनरीबा आई बी असी जुलाई तांग कुंथ्रा मथोई कुमजाली सिंह अमा चमा पलहु फुमंगा द इंग्लैंड की याती हायरबा मफम असी द पोखी महाकी ममा की मम्मी एनी वॉलेन रोलिंग अमदी मपा की मम्मी पीटर जेम्स रोलिंग कौई मचिन मनाव अनी पोपद महाकना अहलनी महाकी अपोपा पोपी अनिमक ब्रिटिश रॉयल नेवी द थबक तौरमी महाकना चही मरी रोम तंगाइरिंगै द मखोइने लैरिब मफम अदुदगी पंगलाप लापतना लैब खुंगंग विंटर बोन हायरिब मफम असिद होंगलखी मफम असिद लैब प्राइमरी स्कूल सेंट माइकल चर्च द लैरिक तंब हौरखी महाकी अपोपी ममा असी वारी मचा अमदी नोवेल पाब यामना पामलमी मरम अदुना लाइरिक मखल कया मखोइगी युमद लैरमी अंगांग ओइरिंगै मतमद अपोपी ममाना वारी मचा कया पादुना मचा सिंगद ताहलमी ममाना लिपीब वारी सिंग असी ताबद रोलिंग की थमुइद यामना नुंगाइजब अमा फाउखी महाकना चही तरा निथोइ सुरकबद विदेन स्कूल एंड कॉलेजद सेकेंडरी स्कूल तमलखी मतम असिद महाकी पोथाब मतम अमदी हैनबी ओइना वारी मचा कया इब हौरखी मतम असिद महाकी पोथाब मतम अमदी हैनबी ओइना वारी मचा कया इब हौरकब मतमनी रोलिंग की वाखलद सागतब अमदी महाकी इमाजिनेशन असी अदुकी मतिक वांगलमी महाकी असिगुंब इबबु पामजब मतौ वाखलोन असी महाकी स्कूल अदुकी ओजा सिंगन खंगलमी अमदी पुकनिंग सु यामना थौगत पिरमी महाकी अपोपी ममा अमसुंग मनाउनुपिसु रोलिंग की अपामब असिद थौना कया हापिरमी नोंगम रोलिंग की मंदोमचा अमना बीबीरकप मतमदुकी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जेसिका मिटफोर्ड की पुंसीवारी लाइरिक अमा पारुबदगी वारी असिद महाक पुंगलुबलुबलमी मसिदगी महाक जेसिका गमरी लैनबा लाइरिक सिंग थीदुना पाखी नोंगम महाकना ट्रेन तोंगदुना चतबा असांगब खोंगचत अमदा तुंगद महाकी पुंसीबु पुंगोन ओलहनगदौरीबा मयामना ख्वाइदगी पामनब ओइखिबा हरी पोटर हायरिबा नोबेल असिगी वाखलम सागतब हौरकलमी मतम असिद महाकी मसाद चे नत्रग कोलोम अमत यौरखिदे मनिंग तमना महाकी वाखलद सागलकलिब वारी असिबु महाकना मयुम हेक यौबगा तपना तपना लेपतना इसिनखि मसिगी मतुंगद महाकी ख्वाइदगी थमोय सोकबा पुंसिगी तंगक अमा यौरखि महाकी मतम पुंबद पांगल थौना हापिरंब अपोपी ममा ताइबंग पानथादोखिरमी मतम असि महाकी युम्बाल पुंसिसु अफब मरी ओइदबना महाकी मचानुपिग मपुरोइबगी मनाकदगी लाबना लैब मतम ओइरमी असिगुंब पुंसिगी अवाब खुदोंचादब कया असिगी मरकद महाकी अमत तंगाइरब आसा मंगलान ओइरिब नोवेल हरी पोटर की वारी निंसिंगलखी मसाना मसाबु थौना हापचदुना मखाताना महाकी नोवेल असि इब हौरखी कुमजाली सिंह मचमापल मरीफुतरा तरुकद हरी पोटर की अहानब चैप्टर लोइसनखी महाकना अरीब टाइपराइटर अमा सिजिनदुना लाइरिक असिबु नुमित कयानी चंगना नमखी अमदी लाइरिक असिबु पब्लिश तौबिनब मफम थीब हौरखी लाइबक थीबदी पब्लिशर कयाना हंजिन हंजिन रिजेक्ट तौबिरखी मतम असिद अंगांगसिंगी वारी मचा पुथोप कंपनी अमगी मपु ओइरिब मिसक अमना महाकी चही निपाल तंगाइरिबी मचानुपिगी पानदम लौखी महाकी मचानुपिनसु लाइरिक अदु यामना पामना पाखी अमदी मखाताब चैप्टर पादुना खंगनिंब हौरखी मसिदगी कंपनी असिना लाइरिक असि पब्लिश तौरगी हाइने यानखी असुमना लाइरिक असि जून कुंतरुक कुमजाली सिंह मचमापल मरीफुतरा तरेत पब्लिश तौखी लाइरिक असि तोंगान तोंगान बलोन हुमफुतरा हुमदोइद हंदोक्तुना कॉपी मिलियन चामा कुन हेना योंदुना ख्वाइदगी वांगना मसिंग योंब लाइरिक ओइखी कुमजाली सिंह अनी तरेत की जुलाई कुमाथोइद नोवेल असिगी अरोइब चैप्टर हरी पोटर डेडली होलोस फोंखी नोवेल असि फिल्म ओइन पुथोकबदसु मालिंगी मियाम पुंबना पामना येंगनदुना पैसा अदुकी मतिक फोंब फिल्म ओइखी ngasi ngasi su lyric asi copy million chonga hena yonduna masing khwai degi wang ne yonba lyric singi manung da ama oiri
0: tabire saknai raba singi wari da jk rolling gi punsi wari akas bani imphal housing nungthil gi pung ani minute tara manga chalak paga loinana miku khara gi matung da delhi degi rile da do pehar samachar phangbiragani

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई

0: के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और आरएसएस के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के चौथे संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
2: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
4: ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।

0: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में हैं। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
1: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
3: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
2: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया,
4: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिगड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
2: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज 36 में भी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी

के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्ते।

ये आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज पर फौजी भाइयों के लिए दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

आज फौजी भाइयों की सेवा में प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुना जाए यह पहला गीत दौर फिल्म से। आवाज़ दिया है सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

दूसरा गाना प्रस्तुत है बाहुबली फिल्म से MM किरावानी और पलक मुछल के युगल स्वरों में एक गीत। शब्द रचना मनोज मुंतशिर के हैं और सुरों से सजाया है MM किरावानी ने।

फौज भाइयों, अभी आपने ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के कमला चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत, और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बेबी रोशनी। आइए अब सुनते हैं प्यार फिल्म से के एस चित्रा और एस पी बालासुब्रमण्यम के युगल स्वरों में एक गीत।

फौजी भाइयों, कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर प्रस्तुत है रॉय फिल्म से कनिका कपूर और मीत ब्रोस के युगल स्वरों में एक गीत।

0: 꾸깃바 토럼 아마다 선비싱 아두 간결라바 비니 비슬 군트라 마토이드 연토키바니 토르마두다 우왕강마다 스리캠산 하이 라이저 시기 세둘 가스 로미싱이 오이나 헤나 센톡 람빌 헤나바 로미싱부 바이가닉 오이바 몽다 사선 욕두나 센동 헤네 부토칸 바마디 마두나 마코이기 센톡 람비 헤나 레헤나 보호나바 이암나 먹다나이 파데 NEC기 마카다 바이클리바 프로젝트 아시나 상공기 포톡 헤나 부토칸나바 센톡 람비 헨갈하나바 마숭 로미 센미싱데 헤나 타북 팡나바 판담 탐리 스키마스기 마카다 임팔 이스트 임팔 웨스트 토발 마숭 각싱 질라싱기 오이나 로미 사트룩타라니 토이다 구동사바 팡할레 아삼다 나클 옴기 오이나 와리 사나바 야우루나바 유나이티드 나가 카운실 UN시레 루싱바 나가기 동안 동안바 시빌 오르가나이제이션 싱기 미훗 강부오마 나시 아육 세나파디 타도크레 아이코이기 세나파디 보미 에 헤키닌 하이 나클 옴기 오이나 와리 사나가도리 바두다 켄드레기 그리헤 만트랄로이 머니푸르 사르카르기 홈 디파르트멘트 아무숭 나가 에펙 시빌 오르가나이제이션 싱기 미훗 강부싱 야우가니 मणिपुर सरकार की कमिश्नर कम सेक्रेटरी होम एल अशोक कुमार ना यूएनसी की प्रेसिडेंट एन जी लोरहोदे इरक पसीथी अमगी मतुंग इना नाकल अहोम की ओइनो वरी सानाबा अदु हयेंग अयुक पुंग तारा माथोइदा असम की बीएसएफ एफटीआर हेडक्वार्टर्स द पांगथोकनी वरी सानाबा दुदा मपुंग ओइना मणिपुर द ओइरिबा आइनम सुंग शांति रक्षा की फिबम मसुंग शांति हंजिलना ब थौरांग सिंगी मतांग द खनरब याई हायरी मियोइ तरा हेने याउबा नागा मिहुत कांगबु अदुदा यूएनसी अनसम Naga Women's Association, Liangmai Naga Council, Rongmai Naga Council, Joint Tribe Council Manipur Amasung, Naga People's Organization ki Mihutsing Yauri. Manipur da Rashtriya Raksha University ki campus ama hangna bagi matang da Griha Matri Govindas Kontho Zamna, Nasi University asi ki Mihutsing ki unakre. Social media da thakalakpa warola madar Sri Govindas na hai, asi gumbak ke mama Manipur da hangtok labadi inkalagliba naha sing da security public safety amadi masiga marilena ballam singde hena khudong saba phangalagani asigum ke mama hang bhai basi tungi mirol gi damak raiza sigi oina tangai phadaba ma oire makata na masigi matang da khanaki gani Shiv Sena Manipur Pradesh ki president M Tombin Hairi matang thagi ani suba musung ahum suba seol da raiza sida griha mantri Amit Shah masung Maharashtra gi upa mukhya mantri Eknath Shinde raiza sida lagani इम्फाल की बाबूपरा दल शिव सेना भवन पांगथोप पागे मिफम श्री तोंबिन हाई एशियन गेम्स की इतिहास मणिपुर की वुसु सानरोय रोसी बिना थंग थना तकमान अहम लौरखीब राइज चौथोसली हाई मणिपुर सही मरी फाजिल कतौरब इरांग राइज मियाम खम थेंगना वाबद नतना नोमद तंगाई फदन चंग पोलम ममल अतिया पक्न वांगले श्री तोंबिन हाई राइज शांति मऊसा की फिवम हंजिल होनाबद जाति कांगलूप अमत पुन थब तौमीब की तंगाई फदब ले कनागुम खरन राइज मसोई मसोई तानब होंदरी केंद्र राइज सरकार अहम मयंग चंग की तंगाई फदब ले खुलाई पाइब फोंग अफब मखल की खुलाई पाइदन चलीब सरकार ने मखोई की मथक थाबक लौखरकदबनी पाव की मरक थन्ना अतेंब ब्रेक अमा
1: माइबम सागई की हानदगी चत्नरक पमतुंग इन्ना लागलिब सेप्टेम्बर की तारीख कुंतरुक लांगबन की पूर्णिमा थांग जे नुमित की अयुक पुंग तरुक तगी पुंग मापल फाउबा माइबम सागई की लैमा पोकपम द लैबा इबुदौ इबेंदौ अपोकपा अपोकपि अनिगी लाई गी थोंग हांगजगनी अमदी इबुदौ इबेंदौ अनिगी मफमदा सागईसा सिंगना खुरुम जबग लोइनना इसा इशु सदा नौदा निजबकी नुमित अदु थोकले मरमदुना सागई असिगी सागईचा खुदिंगमकना सागईगी हैरांग लैरांग ngamjab kachetuna thauni janaba apunba maibam sagai chaukhat lupna paujhe lakli
2: Ningol Kudol Fest Lisingani Kuntaru Lagriba October gi tang amadagi Ningol Chakoba numit November gi tang 13 fauba yum amada changdaba yadraba polam harau kumai luhong khongdong mane chingba thabak thoram kaya da changdaba yadraba polam khudimak pena store da suna phanganjari ban blocketi khudong chadabana pot phangdaba mamal hena tangba amata lahenjeroi pot khudimaki heavy discount loinana akhanaba exciting gift maya mamasu pena store na langduna thamjari kaubiraganu October gi tang amadagi नवंबर की तांग 13 फौबा पेना स्टोर सलाम अमदी सगोलबन ब्रांच
0: ताबिरिब पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर जी रोबर्ट शर्मन हायरी राइज से डिजिटल गवर्नेंस हेन मपांगल कनखननबमदि मियाम की थबक थोरम सिंह तोरपदा टेक्नोलॉजी की खुदोंग साबे हेन पाकथोक चौथोखनबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, वो भी सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सदाबहार गीतों के सिंगार से सजा हर सिंगार लिए आज एक बार फिर स्टूडियो से साथ हूं मैं, आपकी दोस्त रोहिणी। मेरी दुआ सलाम दोस्तों आप तक पहुंचती है इन प्यारे ख्याल के साथ कि कुछ साथ बड़े खास होते हैं। दिल करता है वो हमेशा साथ रहें, वो हमेशा पास रहें। वो कहते हैं ना, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। वो साथ जब मुलाकातों में तब्दील हो जाए तो समझ लीजिए जनाब कि जिंदगी कुछ और ही ताना बाना बन रही है। इस एहसास में अगर सुर और सांस का अंदाज मिला लेंगे ना, तो वाकई में ये सफर और भी आसान लगने लगेगा। आइए हर सिंगार के अंदाज में आज सुनिए सदाबहार गीत 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तलाश फिल्म से ये गीत आपकी नजर करते हैं। लता जी और रफी साहब की आवाज में गुनगुनाया ये गीत, जिसे अल्फाज दिए मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत से सजाया एस टी बर्मन जी ने।

0: फिर से तो फरमाना।
1: दोस्तों कहते हैं कि अगर अल्फाज सच्चे हों तो सूरत मायने नहीं रखती, लेकिन शायद जिंदगी का ये अनुभव हर इंसान उम्र के किसी न किसी पड़ाव में जरूर करता है कि शायद इसीलिए लिखा गया है कि उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए, हो ना हो पर मन उड़ता परिंदा रखिए। आइए सुने अगला गीत, और मेरे सनम फिल्म से ये गीत आप सुनेंगे रफी जी और आशा जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत से सजाया ओपी नैयर जी ने।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं हर सिंगार और हर सिंगार का ये प्यारा अंदाज आप तक पहुंचा रही हूं मैं आपकी अपनी दोस्त। कहते हैं जिंदगी में कुछ चाहतें सिर्फ लफ्ज नहीं होती बल्कि दिल की गहरी आवाज होती है। कोई कई बार ये आवाजें हमारी यादों को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयां करती हैं। कहते हैं लफ्जों की तरतीब मुझे बांधनी नहीं आती गालिब, हम तुमको याद करते हैं, सीधी सी बात है। और ये बातें जब बयां होती हैं तो बड़ा प्यारा अंदाज होता है, फिर वो चाहे निगाहों से हो या अल्फाजों से। आइए सुने अगला गीत आरजू फिल्म से रफी साहब की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन जी ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और गुजारिश आपसे यही कि आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जो भी गीत आपने सुना उसके बारे में जरूर आप तक बताना चाहेंगे जानकारी। कुमार सानू साहब की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को अल्फाज दिए समीर साहब ने और इस गीत को संगीत से सजाया आदेश श्रीवास्तव जी ने। श्रोताओं कुछ गीत संगीत अगर एक अलग मूड से हटकर आप सुनते हैं तो शायद मन और दिल एक साथ जुड़ जाते हैं और आप बड़े ही प्यारे अंदाज में मुस्कुराते हैं। बस यही एक उद्देश्य रहता है आप तक बेहद प्यारे अंदाज में गीतों को पहुंचाने का। और इसी के साथ बस बातों बातों में कुछ बातें बड़ी दिलकश हो जाती हैं और याद आ जाती हैं कुछ ऐसी खूबसूरत यादें जो अल्फाजों में बयां होती हैं। बातों की बात यह है कि किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर दोस्त किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, कहना यही चाहते हैं कि बातों की बात ये है कि समझ में ये आया कि ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं मगर चराग तो इख्तियार में है। पर दोस्तों आप तक लगातार ये प्रोग्राम मैं पहुंचाती रहूं ये मेरे बस में नहीं, क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं देता कि आज के हर श्रृंगार को और आगे बढ़ाएं। तो फिलहाल यही समेटती हूं आज के हर श्रृंगार को और आपको छोड़े जाती हूं इस गीत के प्यारे अंदाज के साथ जो कि है सफर फिल्म से मुकेश जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए इंदिवर जी ने और संगीत से सजाया कल्याण जी आनंद जी ने। तो फिलहाल गुजारिश आपसे यही कि सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये खूबसूरत प्यारा अंदाज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए सात सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए सात सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन सात सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये सात सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही सात सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर को अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में आयोजित 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने जल संरक्षण में जनभागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य के सिविल सचिवालय से सोमनाथ यात्रा 2026 को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 प्रतिभागी इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि वर्ल्ड स्किल्स शंघाई में टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से अधिक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है। आज की आर्थिक खबरों की बारीकियों पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार एके भट्टाचार्य स्टूडियो में आमंत्रित हैं। नमस्कार मिस्टर भट्टाचार्य, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: और अब हेडलाइंस के साथ अर्जुन चौधरी।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड विद मॉडेस्ट गेन्स, सेंसेक्स राइजेस 315 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 23,100। इंडस्ट्री नीड्स टू बी रिमेन ग्लोबली

0: competitive to attract foreign capital, says Chief Economic Advisor V. Ananta Nageswaran, and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक मामूली बढ़त पर हुए बंद. सेंसेक्स 315 अंकों की वृद्धि में रहा. निफ्टी 23,100 के स्तर को पार कर गया. विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए उद्योग जगत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बने रहना जरूरी है, कहा प्रमुख आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नगेश्वरन ने. और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई गिरावट.

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 0.43% की तेजी से 315 अंक बढ़कर 73,896 पर बंद हुआ. निफ्टी 0.34% की बढ़त से 77 अंक ऊपर 23,141 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में रुख मिला जुला था. मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% से अधिक की गिरावट में रहा. हालांकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.1% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई. मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच बाजार आज सुबह सपाट खुले थे. अधिकांश सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव बना रहा, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और निचली कीमतों पर हुई खरीदारी के समर्थन से कारोबार के आखिरी घंटे में बाजार में तेजी आ गई.
0: Benchmark domestic equity indices ended on a positive note today. Sensex rose 315 points, or 0.43%, to close at 73,896. Nifty gained 77 points, or 0.34%, to settle at 23,141. The broader market at the National Stock Exchange displayed a mixed trend. The mid-cap 100 index dropped over 0.1%, while the small-cap 100 index rose more than 0.1%. Markets opened flat this morning amid mixed global cues. Sensex and Nifty stayed subdued through most of the session, but staged a recovery in the final hour, supported by a decline in crude prices and value buying.
1: और कंपनियों पर नजर डालें तो सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 20 के शेयर आज तेजी में रहे. सबसे अधिक बढ़ने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक 2.8%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.2% से अधिक और एशियन पेंट्स का शेयर 1.9% की वृद्धि में रहे. इसके विपरीत ट्रेंट का शेयर 1.4% गिर गया. इंफोसिस के शेयर में 0.8% की गिरावट आई और कोटक महिंद्रा बैंक 0.5% के नुकसान में रहा.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 21 out of the 28 sectors edged upward, with commodities remaining unchanged. Among the top gainers, consumer durables jumped 1.1%, auto surged over 0.9%, and realty rose over 0.6%. Conversely, hospitals declined 2.1%, healthcare lost 0.5%, and oil and gas, as well as telecommunications, dipped over 0.2%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,210 companies advanced, 2,146 companies declined, and 220 companies remained unchanged.
1: और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे की मजबूती दर्ज करता हुआ 95.82 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. मिस्टर भट्टाचार्य, कल की जो भारी गिरावट आई उसके बाद आज जो कारोबार हमने देखा है 300 अंकों से अधिक बड़ा है सेंसेक्स, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या रीजन रहा आपके अनुसार?
2: पहली बात तो ये है कि रिकवरी हुई है. कल जैसे आपने कहा कि बहुत भारी गिरावट थी, उसके बाद थोड़ी बहुत जो वैल्यू बाई हुई है उसके लिए ये उसके लिए जिम्मेदार है. पर ये जो रिकवरी जो हुई है उसकी जो कल की जो जो सेटबैक जो या लॉस जो थी उसे आधी भी रिकवरी नहीं हुई है. तो मार्केट में अभी भी काफ़ी अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है मार्केट के साथ, और उसका एक एक प्रधान इंडिकेशन ये है कि आज की भी जो जो गेंस हुई हैं उसमें भी अगर आप देखें तो FII नेट सेल किया है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जरिए से ये मार्केट में ये चढ़ाव आया है. तो इसका मतलब यही है कि जब मार्केट गिरती है उस टाइम में भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, पर FII की जो मतलब बिकवाली के कारण वो मार्केट नीचे जाती है. और जिस समय मार्केट चढ़ती है उस समय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन उसी तरह वो सटीक रहते हैं पर FII भी निकल जाते हैं. तो इसका एक एक एक कारण यही है कि जो FII अभी भी इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं किस तरह से इंटरनेशनल यूएस मार्केट का रुख देखते हुए, क्योंकि वहां पे यील्ड्स अभी भी बढ़ती रही है और इसीलिए वो ज्यों ही एक मौका देखते हैं, अगर रुपए में थोड़ी बहुत जान आ जाती है उससे वो, अगर मान लीजिए रुपए थोड़ा अप्रिशिएट करती है तो वो भी एक इंसेंटिव होता है उनके लिए पैसे ले जाने का। और लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम जो है इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। इतना लिक्विडिटी ड्रेन आउट हो रहा है मार्केट से, अगर आप आईपीओ कहेंगे या फॉरेन एक्सचेंज जो इन्फ्लोज जो आए हैं उसके लिए लिक्विडिटी है, उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ओएमओ लिक्विडिटी ड्रेन आउट करने के लिए हुआ है, वो भी एक कारण है ये इस मार्केट की चढ़ाव और उतराव ज्यादा चढ़ाव कम।
1: तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि जो FIIs हैं उनका फोकस अलग फैक्टर्स पे है और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनका शायद दे आर लुकिंग इनवर्ड, जो हमारी मजबूती है।
2: देखिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हमारे देश की जो स्टॉक मार्केट की जो एक बुनियादी ढांचा जो बदल रहा है वही प्रतिफलित करता है कि हमारे इसमें अगर आप पिछले 6 साल में ये ट्रेंड देखें कि डायरेक्ट इक्विटी कम हो गई है, इंश्योरेंस कम हो गया है, बैंक सेविंग्स कम हो गया है, पर एक चीज जो बढ़ता रहा है वो है म्यूचुअल फंड्स। और वो म्यूचुअल फंड की जो पिछले 6 साल की जो जो जो आंकड़े दिखते हैं वो करीबन 10% की वृद्धि हुई है। हालांकि सारे जो मैंने कैश बोलिए या डायरेक्ट इक्विटी बोलिए, इंश्योरेंस बोलिए या पेंशन फंड्स बोलिए, ये सारों में डिक्लाइन हुआ है और उस डिक्लाइन को कॉम्पेंसेट किया है म्यूचुअल फंड्स ने। और म्यूचुअल फंड्स ही आज डायरेक्ट जो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की पहली एक उनकी, तो ये मैं समझता हूँ कि जो मार्केट में जो अभी भी जो अभी जो जो जो जान जो है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और पर्टिकुलरली जो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के जरिए बची हुई है।
0: AKB, let's now come to specific sectors. The auto index actually went up by 1%. Some of the prominent companies actually went up by as much as 2 and 2.5%. What other reasons? Borrowing costs are creeping up because of global inflation imported into the economy. Crude oil prices going up, even though they are arrested right now. But do you think that the volume sales is going to pick up, smaller cars revival, etc.? Is that what's reviving sentiment?
2: The auto industry is particularly positively influenced by the revival and good going of the EV sector. If you look at the companies that have done well in the stock market, they are actually companies that are well positioned in the EV sector. If you look at the auto industry's performance and composition of the market share of different kind of categories of vehicles, you see the creeping increase of the EV sector, the electric vehicle sectors. Now that is a growth margin, growth area, and there the margins of the auto companies much higher. So it is that increase in the margins and rising market share. I mean, there was a time about a year ago, the market share of EVs in the passenger vehicle category was less than 33 or 34. Today is almost around 41, 42. Now it is actually, if you take the non-passenger vehicle categories and the passenger vehicles category, you will see that the EV segment is actually becoming very, very substantial. So therefore, the auto sector is responding to that improvement, which is the margins are rising because of the EV segment's growth.
0: So realty also went up by 0.6% today. How do you see auto and realty being linked to borrowing costs? Because you have to borrow in order to acquire both immovable and movable properties for the consumer.
2: The realty is rising because it realizes that the segments that will be positively benefiting them are still very much intact. For example, the consumption and the demand in the economy is still intact. So the realty is responding to those positive signals, which is why the borrowing costs are not a source of relief at all for the Indian companies. On the contrary, the borrowing cost probably will go up as times come. Because in October monetary policy review, you might see the borrowing costs go up. So it is the despite the borrowing cost increase, the demand visibility in the realty sector is what is keeping the realty sector alive.
1: So, Mr. Bhattacharya, अगर हम देखें तो जैसा आपने कहा कि uncertainty बहुत है global level पर, लेकिन crude prices अभी for now नीचे आए हैं और लगता है कि शायद कुछ शायद कोई peace deal भी उसके कुछ आसार नजर आ रहे हैं. और अगर domestic जो मजबूती देखें, जो जिस तरह के GDP figures हमारे आए हैं, जिस तरह के GST collections, जो भी macro indicators हैं, आपको लगता है कि एक का जो undercurrent है वो positivity का है अभी भी जो भारतीय बाजार है?
2: देखिए जरूर, मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि आपकी जो एक्सेप्ट एक एरिया में जो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है हमारी, टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की जो डिफरेंस जो है, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड में थोड़ा बहुत शॉक दिख रहा है. बाकी जो सेक्टर्स में ग्रोथ मोमेंटम है, और वो आपकी अगर आप कंजम्पशन फिगर को देखें या इन्वेस्टमेंट फिगर्स को देखें, दोनों में भी आपको लगेगा. पर हाँ, टर्म्स ऑफ ट्रेड में का एक एडवर्स शॉक जरूर इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में जरूर मिला है.
0: निफ्टी बैंक सॉ माइनर रिकवरी टुडे, स्पेशली आफ्टर द करेक्शन येस्टरडे बिकॉज ऑफ द पॉलिसी अनाउंसमेंट बाय IRDA on the insurance sector and the distributors being banks themselves, and the income is likely to hit. What is the prospect of banking valuation right now?
2: Yesterday's the setback to the banking stocks was largely because of the insurance regulators' stipulation that they cannot, and banks are in the insurance sector in a big way. They cannot offer the kind of commission they have been offering, which is substantial, 26% commission of sorts. So today, some of the banks which are not so doing so well in the insurance sector, or no that pronounced in the insurance sector, they have recovered, and not every bank.
1: आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का. एशियाई शेयर बाजारों में जापान का निकेई सूचकांक 1.3% बढ़कर बंद हुआ. दक्षिण कोरिया के बाजार आज अवकाश के कारण बंद थे. अब रुक करते हैं भारतीय परिवेश में. मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा भारत के पास व्यापक विनिर्माण और समग्र सुधारों के माध्यम से विदेशी पूंजी आकर्षित करने की क्षमता है. नई दिल्ली में आयोजित पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के 13वें वार्षिक मंच को संबोधित करते हुए श्री नागेश्वरन ने कहा कि उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा है. उन्होंने कहा कि निवेश संबंधी निर्णय लेने का वैश्विक परिवेश अब बदल गया है, इसलिए इस संदर्भ में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रदर्शन का आकलन करना महत्वपूर्ण हो गया है. श्री नागेश्वरन ने कहा निवेशक संरक्षण, कर नीति की निश्चितता और स्थिरता, कुशल प्रतिभा की उपलब्धता और लॉजिस्टिक्स भी निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि वैश्विक ब्याज दर का बदलता परिवेश भी पूंजी की लागत और सीमा पार निवेश प्रवाह पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है. तो क्या लगता है आपको, जो प्रतिस्पर्धा की उन्होंने बात कही, वैश्विक प्रतिस्पर्धा की, और ये जो इम्पोर्टेंट उन्होंने फैक्टर्स बताए हैं, कैसा आप परिदृश्य देखते हैं या आने वाले भविष्य में क्या संभावनाएं देखते हैं?
2: बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, और नागेश्वरन जी ने पहले भी इसके बारे में इनकी हमारी दृष्टि आकर्षित किया है. जो जिस तरह से हमारी जो देश की आर्थिक वृद्धि दर चली है पिछले 3 दशक में, और इस वक्त जो वातावरण जो है, जो परिस्थितियां जो हैं, वो इतनी अनसर्टेन है, अनिश्चयता से गुजर रही हैं. ग्लोबल अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क जो बढ़ गई हैं, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की जो रिस्क बढ़ गई है, उस समय उनका ये कहना है कि हालांकि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हमें स्टेबिलिटी लानी है, जिससे कि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस या प्रतिस्पर्धा हमारी बरकरार रहे, पर उसके साथ साथ ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए एक नई मॉडल की ज़रूरत है. और उसी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में उनका यही कहना है कि जो अब तक हम करे आ रहे हैं वो शायद काफ़ी नहीं होगा, आगे हमें और भी जो आगामी काल के लिए हमें उसको
1: जो सुधारों की गति है वो जारी रहनी
2: जरूरी है।
0: In more news, the government, in consultation with the Reserve Bank of India, RBI, will borrow 7,86,000 crore rupees in the second half of the current financial year. This includes a sovereign green bonds issuance of 15,000 crore rupees. According to an official statement of the Finance Ministry, the borrowing will be executed through 23 weekly auctions. With this, the total borrowing for the full financial year is expected to reach 15.9 lakh crore via dated securities. For the benefit of our listeners on Akashvani, tell us, what are the sovereign green bonds and the debt to GDP ratio that India economy is facing?
2: Well, this development has greater significance for how the government is going to play out in its fiscal consolidation program. Green bonds is a very small part of the overall borrowing, as you can make out that after 15 lakh crore of borrowing or 16 lakh crore of borrowing, you have a very small amount of green bond, but it sends out a very positive signal to the market. But the bigger signal to the market, a very reassuring signal at that, is that the government's commitment on 4.4% of fiscal deficit, which is actually what is composed of these borrowings, will, as of now, will remain under check, and the government is preparing for meeting that target. So from 4.4, it is supposed to come down to 4.3 in the current year. And if this number is what the government is planning to borrow in the second half, which means that it will not exceed its borrowing levels
0: as per the FRBM.
2: As per the FRBM and as far as the commitment that the government made in Parliament. So for fiscal hawks and the fiscal consolidation program watchers, this is really a piece of good news.
1: और लेते अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया का उद्देश्य ऐसा बुनियादी ढांचा, उद्यम और नवाचार तैयार करना है जिससे भारत विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सके। सो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा उत्पादन बढ़ा है उसकी बात कही कि 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ रुपए था, जो बढ़कर अब 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और रक्षा उत्पादों का उन्होंने जिक्र किया, 46,429 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए। इसमें कितना इम्पोर्टेंट है नए जो सेक्टर्स हैं उसमें।
2: एक अभी तक हमने प्रधानमंत्री जी को सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात, अब लग रहा है कि एक्चुअल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो काम हुआ है उसके ऊपर वो हमारा दृष्टि आकर्षित करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में हालांकि ज्यादातर मोबाइल फोन का हुआ है, पर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में पिछले 3-4 सालों में बहुत ही एक अभूतपूर्व एक वृद्धि, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, प्रोडक्शन बढ़ा है, और उसके साथ साथ जो डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो प्राइवेट सेक्टर के आने से इसमें एक नई तेजी आई है, नई रफ्तार आई है। तो मैं समझता हूं कि डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और दोनों साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके वो हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को काफी बढ़ावा दे सकती है।
0: In more news, SEBI board has approved a slew of reforms to deepen market participation, widen investment avenues and simplify regulatory norms. At its 215th meeting, SEBI approved a comprehensive overhaul of regulations governing portfolio managers. Under the new regulations, portfolio managers will be permitted to invest in IPOs, primary debt issuances and certain foreign securities, while also providing a route for investment in direct mutual fund plans.
1: उधर देश का विदेशी मुद्रा भंडार 18 सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान लगभग 14.9 अरब डॉलर कम होकर 765.9 अरब डॉलर पर आ गया। अभी भी बहुत एक हेल्दी लेवल है, आप कहेंगे?
2: जरूर, क्योंकि जो एफसीएनआर भी जो करेंसी स्वैप के आधार में जो पैसा आया था वो अभी भी बरकरार है, और इससे दिखा रहा है कि सरकार की जो नीति थी वो एकदम सही जगह थी।
0: The new merchant discount rate framework will come into effect from the 15th of next month. Under this framework, unified payments interface UPI transactions of up to 2,000 rupees will attract zero MDR. National Payments Corporation of India said that the framework is in line with the international payment system. Most global payment systems, including digital public infrastructures, have economic models that support infrastructure and innovation. It added that India's approach continues to prioritize accessibility, scale, and inclusion. The US and Iran are reportedly exploring a phase part when their conflict with Iran, proposing to reopen the Strait of Hormuz in return for the lifting of the US blockade and other economic measures. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Tehran had conveyed a proposal through intermediaries under which the strait would be reopened if its conditions were met. These include an end to hostilities on all fronts within 7 days, the lifting of the US blockade on Iranian ports, the release of frozen Iranian funds, and a waiver of oil sanctions. Let's combine this with the crude oil story as well. Global crude oil prices dropped today as markets assess the possibility of a truce between US and Iran. Brent crude was trading 1.7% down at $104.82 per barrel. WTI crude was trading 2.2% lower at $92.49 per barrel at the time of writing this report. Even Urals oil is at $99 per barrel. Possibility of a truce, slight correction in the oil market. What is the strength you feel in the talks and the response from Iran regarding reopening of the strait within 7 days?
2: The markets are reacting to statements made by the various leaders. And I think the crude oil market has also responded to that. But the very fact that peace talks are going on and there is some hope on the horizon, and if the market prices of crude oil are softened a bit, I think it's good news for India, because India is dependent on this crude oil, and as you rightly pointed out, even Ural prices have gone up. So the discounts that India used to enjoy earlier is no longer there. So that crude oil prices are under check, if not going up, is good news for India, India's external sector and macroeconomy.
1: चलते हैं कीमती धातुओं की ओर. भारतीय सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 0.9% बढ़कर 152,113 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंची. भारतीय सराफा और आभूषण निर्माता संगठन द्वारा जारी समापन दरों के अनुसार चांदी का मूल्य 1.8% बढ़कर 232,350 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया. जिस तरह की अनिश्चितता है, नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में जो सोना चांदी है उसकी कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन अभी हम एक स्थिरता देख
2: स्थिरता भी है और फेस्टिवल सीजन का आने वाला है और उस समय इस समय डिमांड भी थोड़ी बहुत बढ़ती है और इस अनसर्टेनिटी में लोग गोल्ड की तरफ सिल्वर की तरफ ज्यादा जाते हैं और सिल्वर के साथ इंडस्ट्रियल आउटपुट का भी एक संपर्क है.
1: तो आपको लगता है कि कीमतें बढ़ने की
2: संभावना है और इंडिकेशन जो आ रही है आज की मार्केट में भी थोड़ा बढ़ा हुआ
1: समय
2: है.
1: हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
2: नमस्कार. धन्यवाद.
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end with modest gains. Sensex rises 315 points. Nifty settles above 23,100. Industry needs to remain globally competitive to attract foreign capital, says Chief Economic Advisor V. Anantha Nageswaran. And global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। दोस्तों, मन की गहराइयों में ना वो गीत जो आज भी आपके मनमीत बने हुए हैं, कुछ ऐसे ही अंदाज से सजी गीत मेरे मनमीत को लेकर एक बार फिर साथ हूँ मैं रोहिणी। दोस्तों, कुछ साथ ना दिलों की यादों को समय समय के साथ महकाते रहते हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग किस्मत में नहीं दिल में लिखे होते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के लिए पर उम्र भर याद रहते हैं। कुछ इन सदाबहार गीतों की तरह। जी हाँ, आइए सुनते हैं गीत मेरे मनमीत का ये प्यारा अंदाज 101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और फिलहाल ये गीत याराना फिल्म से आपकी नजर करते हैं किशोर जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए अंजन साहब ने और संगीत बद किया राजेश रोशन जी ने। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत 101.1 मेगाहर्ट्ज़।

से चांद और करीब आ जाए, कुछ पल के लिए चांदनी सीने में उतर जाए, लगा लूं एक बार गले और तसल्ली हो जाए, कभी तो चांद धरती की बाहों में समा जाए। कुछ प्यारे ख्यालात और ये प्यारा एहसास इस समा को और भी खूबसूरत बनाएगा। ये अगला गीत आप सुनेंगे जब जब फूल खिले फिल्म से, और इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। आइए सुने ये खूबसूरत अंदाज।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह खूबसूरत अंदाज गीत मेरे मनमीत में आप सुन रहे थे श्रोताओं। जी हाँ, फिल्म थी रजिया सुल्तान और आवाज बेहद प्यारी लता जी की। इस आवाज को बोल दिए जानिसार अख्तर साहब ने और संगीत से सजाया खयाम साहब ने। आइए ये अगला प्यारा अंदाज सुने द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से आशा जी की आवाज में, आनंद बख्शी साहब के बोल और आर डी बर्मन साहब का खूबसूरत दिलकश अंदाज। दिलों की ये प्यारी आवाज।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत के कुछ ऐसे अंदाज गीतों के आप तक पहुंच रहे हैं जो दिल को बहुत सुकून पहुंचा रहे हैं और ये कहें कि दिल की बातों को बड़ी गहराई से आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल समय हमें इजाजत नहीं देता कि आज के इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, तो फिलहाल इस गीत के साथ आपसे लूंगी इजाजत, आपको छोड़े जाती हूं आपके अपने पसंदीदा FM गोल्ड के साथ और इस प्यारे से गीत के साथ जो कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से ये गीत है लता जी की आवाज में। आइए इसको सुनते हैं। इस गीत को अल्फाज दिए हैं अंजान साहब ने और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य

0: सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ. जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड ने व्यापारियों के कल्याण, कारोबार सुगमता, डिजिटल सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, केंद्र राज्य समन्वय और निर्यात संवर्धन से जुड़े उपायों की समीक्षा की है। बोर्ड की 11वीं बैठक में वस्तु और सेवा कर, जीएसटी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, एमएसएमई, व्यापारियों की शिकायतों के निवारण, खुदरा विक्रेताओं, निर्माताओं, निर्यातकों तथा सेवा प्रदाताओं के लिए संस्थागत सहयोग मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 SIR के अंतर्गत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेज, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए पंजीकरण के लिए योग्य 18 से 25 साल की उम्र के छात्रों को फॉर्म 6 भरने में बूथ लेवल ऑफिसर BLO सहायता करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आवश्यक फॉर्म और सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, आवेदनों का रिकॉर्ड रखने, दूसरे जिलों या विधानसभा क्षेत्र से संबंधित फॉर्म संबंधित अधिकारियों को भेजने और शिविरों का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction yesterday with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under the Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of their service.
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: During the interaction, these yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the yatris to maintain a diary and record their experiences during the yatra. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the initiative has led to more being

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है बाबू।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। रफ्ता रफ्ता दिले बेताब ठहर जाएगा, रफ्ता रफ्ता दिले बेताब ठहर जाएगा, रफ्ता रफ्ता तेरी नजरों का असर आएगा, रफ्ता रफ्ता तेरी नजरों का असर जाएगा, धूप और छांव मुसल्लम मगर अपनी हद में, धूप और छांव मुसल्लम मगर अपनी हद में, वक्त पाबंद नहीं है कि ठहर जाएगा। रोशनी में है चरागों के तले तारिकी, रोशनी में है चरागों के तले तारिकी, हम समझते थे कि माहौल संवर जाएगा, हम समझते थे कि माहौल संवर जाएगा। और अगला गीत फिल्म दो रास्ते से, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है चांदनी, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। एक पुराना खत मिला, एक पुराना खत मिला कपड़ों के नीचे किसी संदूक की तह में, जैसे बीते बरसों ने अपनी कोई सांस छिपा रखी हो। स्याही फीकी थी पर संबोधन में वही गर्माहट थी। अक्षर थोड़े कांपते हुए फिर भी पहचानने में एक पल भी नहीं लगा। उस पन्ने पर किसी ने प्रेम लिखा था, किसी ने घर का हाल, किसी ने लौट आने की आस और किसी ने बस इतना कि अपना ख्याल रखना। कितना छोटा था वाक्य पर उसमें कितना बड़ा संसार। बाहर की दुनिया उंगलियों की गति से आगे निकल गई। संदेश क्षण भर में दूर देश तक पहुंचने लगे, मगर इस कागज ने अब भी अपनी धीमी चाल नहीं छोड़ी। वह आज भी शब्दों के बीच एक चेहरा संभाले है, एक आवाज, एक मौसम, एक ऐसा अपनापन जिसे किसी स्क्रीन पर उतारा नहीं जा सकता। मैंने खत फिर तह किया इस बार संदूक में रखने के लिए नहीं, अपने समय से बचा कर रखने के लिए। आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है तीसरी कसम।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत फिल्म स्वामी से, आवाज है यसुदास की।

सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है अर्पण, आवाज है लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: देखिए, हमारा फाइव स्टार होटल है। यहाँ पर हमेशा कैबरे के प्रोग्राम ही पसंद किए जाते हैं। कवाली का प्रोग्राम
1: मैनेजर साहब, किस तक तक हमारा फोक का ऐसा प्रोग्राम नहीं कर देखने वाले नाचने की पंजाबूर पार्टी है।
2: काम भी देख लीजिए ना। गुड मॉर्निंग मैनेजर।
1: गुड
2: मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग। ये मेरी बेटी है सोना।
0: ओ,
1: हमारे ट्रुप के तरह के प्रोग्राम को करती है।
0: ओ, प्लीज सिट डाउन सोना।
2: शुक्रिया।
0: चाय
2: जी नहीं। मैनेजर साहब, एक प्रोग्राम करने का मौका दीजिए, उसको मैं पूरा सीजन। बाबा
0: ओके।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण गंतव्यों को जोड़ेगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई ट्रेन सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन से संबंधित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की अगस्त महीने की 52वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष अगस्त में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने 2,42,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 SIR के अंतर्गत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेज, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आवश्यक फॉर्म और सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, आवेदनों का रिकॉर्ड रखने, दूसरे जिलों या विधानसभा क्षेत्र से संबंधित फॉर्म संबंधित अधिकारियों को भेजने और शिविरों का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। जापान एशिया खेलों के कल 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलिंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction yesterday with Seva Yatris, travelling on the Yatra from Varanasi to Vatnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vatnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service. During the interaction, these Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the Yatris to maintain a diary and record their experiences during the Yatra. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the initiative has led to more being made in India, more investment in India and more exports from India. He said this transformation is visible across sectors. The Prime Minister said Make in India is about creating infrastructure, enterprise and innovation that allow India to grow and prosper. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 138th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live-streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The Office of the Chief Electoral Officer, CEO Delhi, has directed all district election officers to organize special camps for enrollment of young electors at colleges, universities and other educational institutions across Delhi on September 29th and 30th of this month as part of the Special Intensive Revision 2026. Students between the age of 18 to 25 eligible for registration will be assisted by the BLOs to fill forms.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की खूबसूरत सी महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम है चिराग।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। नदी किनारे कांस खिले, नदी किनारे कांस खिले जैसे उजली पात, दूर तलक फैली हुई चांदी की सौगात। हवा चली तो झूम उठे लहराए वन फूल, शरद उतर आई जैसे धरती के प्रतिकूल। नहीं यह तो ऋतु का सबसे कोमल रूप, यह तो ऋतु का सबसे कोमल रूप। और अब अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है प्यासा सावन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, और आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी, आवाज है कविता कृष्णमूर्ति की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और आपके साथ हूं मैं जयति। रोशनी तेज करो चांद सितारों अपनी, रोशनी तेज करो चांद सितारों अपनी, मुझको मंजिल पे पहुंचना है सहर होने तक, मुझको मंजिल पे पहुंचना है सहर होने तक। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में और फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। कभी अक्षर भी हाथों की तरह पहचाने जाते थे, कभी अक्षर भी हाथों की तरह पहचाने जाते थे। लिखावट देखते ही मन कह उठता था, हाँ यह उसी का है, हाँ यह उसी का है। किसी पन्ने पर माँ की चिंता खिली थी, कहीं पिता का संक्षिप्त स्नेह, कहीं पिता का संक्षिप्त स्नेह, कहीं प्रेम ने संकोच से अपना नाम लिखा, कहीं प्रेम ने संकोच से अपना नाम लिखा। हर पत्र के साथ एक मन यात्रा करता था, हर पत्र के साथ एक मन यात्रा करता था। डाकखाने से निकलकर गलियों पगडंडियों शहरों को पार करता, किसी दरवाजे तक पहुंचता और फिर एक जोड़ी आंखों में उतर जाता, और फिर एक जोड़ी आंखों में उतर जाता। तब उत्तर आने में दिन लगते थे, मगर हर दिन उस व्यक्ति का हिस्सा बन जाता था जिसके आने की खबर एक कागज में बंद थी, एक कागज में बंद थी। और अब चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी छोड़ जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है साजन, आवाज है SP बाला सुब्रमण्यम की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेमा सानी चंद्र शेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला 2026 महिला स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के बाद उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों तक के साथ आयोजित किया जाएगा। देशभर से लगभग 2500 प्रतिभागियों के हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य और अन्य ग्रामीण उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री करने की उम्मीद है। डॉ. पेमा सानी ने कहा कि ये मेला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग, बाजार संपर्क और सीधी बिक्री को बढ़ावा देगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान योजना के नियमों और निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने 4 सदस्यीय टीम गठित की है। ये टीम राज्य व्यापक स्वास्थ्य और एकीकृत सेवा एजेंसी साचिस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रही है। राज्य व्यापक स्वास्थ्य और एकीकृत सेवा एजेंसी साचिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करने के लिए औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस वर्ष पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी में प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। इसमें राज्य की भक्ति परंपरा, हस्तशिल्प, चित्रकला, वस्त्र और साहित्यिक विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियां शामिल हैं। नीलामी सूची में ओडिशा के कई पारंपरिक हस्तशिल्प भी शामिल है। इनमें कटक की चांदी की फिलीग्री या तारकशी कला या संबलपुरी वस्त्र और इक्कत प्रमुख है। पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन जारी है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन से संबंधित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की अगस्त महीने की 52वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष अगस्त में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने 2,42,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction yesterday with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vatnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said, Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service. During the interaction, these Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also encouraged the Yatris to maintain a diary and record their experiences during the Yatra. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the initiative has led to more being made in India, more investment in India and more exports from India. He said this transformation is visible across sectors. The Prime Minister said Make in India is about creating infrastructure, enterprise and innovation that allows India to grow and prosper. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad on the Mann Ki Baat program in Akashvani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 138th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live-streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News and the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The Office of the Chief Electoral Officer, Delhi, has directed all the district election officers to organise special camps for enrolment of young electors at colleges, universities and other educational institutions across Delhi on September 29th and 30th as part of Special Intensive Revision 2026. Students between the age of 18 to 25 eligible for registration will be assisted by BLOs to fill Form 6 for inclusion in the electoral rolls. The CEO has also directed officials to ensure adequate forms and materials, maintain records of applications, transfer forms relating to other districts or assembly constituencies to the concerned authorities and publicise the camps widely. The External Affairs Minister is in New York leading the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of the United Nations General Assembly. Dr. Jaishankar will address the high-level session today. During the visit, the minister has attended various plurilateral and bilateral meetings. In Asian Games, India's overall medal tally has reached 23 with two gold.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में आज कुछ बातें नई पुरानी करते हैं। जब पुरानी बातें चली हैं तो हम चिट्ठियों की बात कर रहे हैं। संदूक में रखे पुराने पत्र समय के सबसे सच्चे दस्तावेज लगते हैं। उनमें किसी का घर का सुख है, किसी बिछड़े मन की कसक, किसी रिश्ते की चिंता और किसी प्रेम की चमक। बाहर दुनिया बदलती रही, कपड़े बदले, घर बदले, शहर बदले,

और बदलते बदलते संवाद भी बदल गया। अब शब्द उंगलियों से निकलते हैं और पलक झपकते दूर चले जाते हैं, मगर संदूक में रखे पत्र आज भी अपनी रफ्तार से हमें देखते हैं, जैसे पूछ रहे हो क्या शब्दों को बचाने के लिए कभी किसी कागज की जरूरत पड़ेगी। और अगला गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में, फिल्म का नाम है साजन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयति। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है विनोद राठौड़ और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है चांदनी।

आज फिर मिल गया। अलमारी के सबसे नीचे रखा वो छोटा सा डब्बा आज फिर मिल गया। अंदर कुछ सिक्के थे, दो पुराने टिकट और एक तस्वीर। तस्वीर देखते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। कितना बदल गया है सब कुछ। जब जेब में पैसे कम थे मगर घूमने की इच्छाएं बहुत थीं, एक टिकट ने पूरा सफर याद दिला दिया। एक तस्वीर ने पूरा दिन। हमारी जिंदगी भी कितनी अजीब है। कुछ साल बीत जाते हैं, फिर कोई छोटी सी चीज पूरा बीता हुआ मौसम एक पल में सामने रख देती है। और आज सुरमई में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है अप्रैल फूल, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई और साथ हूं मैं जयती। रात से पूछिए तो वो दिन का हिसाब नहीं मांगती, वो बस अगली सुबह तक का थोड़ा समय देती है। जो अच्छा रहा उसे दिल में रखिए, जो बिगड़ गया उसे हर पल दोहराने की जरूरत नहीं। कुछ फैसले सुबह की रोशनी में बेहतर समझ आते हैं, इसलिए हर सवाल का जवाब अभी इसी वक्त जरूरी नहीं। आज बस अपने मन को आराम दीजिए, कोई प्यारा सा गीत सुनिए और आने वाले कल की थोड़ी सी जगह बचा कर रखिए, क्योंकि जिंदगी हर सुबह एक नया पन्ना लेकर आती है और शायद यही अगली सुबह की कहानी आज रात से शुरू हो रही है। वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाय की अनुमति, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण गंतव्यों को जोड़ेगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई ट्रेन सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। भारत की प्रमुख उर्वरक उत्पादक किसान सहकारी संस्था कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको ने वित्त वर्ष 2025-26 में 824 करोड़ रुपए से अधिक का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है। नई दिल्ली में आयोजित क्रिबको की वार्षिक आम बैठक में प्रबंध निदेशक एसएस यादव ने कहा कि क्रिबको और उसकी सहायक कंपनियों ने उत्पादन और परिचालन दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं की पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के दक्षिणी क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र शामिल थे। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस वर्ष पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी में प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। इसमें राज्य की भक्ति परंपरा, हस्तशिल्प, चित्रकला, वस्त्र और साहित्य की विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियां शामिल है। नीलामी सूची में ओडिशा के कई पारंपरिक हस्तशिल्प भी शामिल है। इनमें कटक की चांदी की फिलिग्री या तारकशी कला तथा संबलपुरी वस्त्र और इक्कत प्रमुख है। पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन जारी है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में सर्दियों के दौरान डाक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अनूठी पहल शुरू की गई है। भारी बर्फबारी से सड़कें बंद होने पर अब ड्रोन के जरिए दूरदराज के डाकघरों तक डाक पहुंचाई जाएगी। इसका उद्देश्य भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों को निर्बाध डाक सेवा उपलब्ध कराना है। मंडी में सफल परीक्षण के बाद अब इस व्यवस्था को लाहौल की 11 और दूरदराज शाखाओं तक पहुंचाने की तैयारी है।

दोस्तों आपने ट्यून किया है एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। हमराही कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को वंदना चुक का प्यार भरा नमस्कार।

इस गीत को सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि हम बचपन में लौट गए और एक दूसरे के साथ अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। ये गीत था श्री 420 फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज है। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और धुन तैयार की है सचिन देव बर्मन ने।

और वैसे भी दोस्तों, अगर कोई किसी से मिलता है तो हालचाल तो पूछता ही है और कहते भी है ना, कैसे हैं आप? तो बड़ा अच्छा लगता है, चाहे हम हमारा हाल ठीक ना भी हो तो भी हम कहते हैं बढ़िया हैं, तो सुनने वाले को बहुत एनर्जी मिलती है। आपको बता देते हैं कि आपने ये गीत सुना चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, और अगला गीत आप सुनेंगे हावड़ा ब्रिज फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ, कमल जलालाबादी की रचना है और ओपी नैयर का संकेत।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और इस कार्यक्रम में आप युगल गीत सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz पर।

और जब ऐसे में दिल चला जाता है तो पता ही नहीं चलता। फागुन फिल्म से गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। कमर जलालाबादी की रचना थी और ओपी नैयर का संकेत।

अगला गीत आप सुनेंगे यहूदी फिल्म से, लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाज में। शैलेंद्र की रचना है और शंकर जयकिशन का संगीत। दोस्तों, इन गीतों को सुनते हुए आज बहुत ही पुराना दौर याद आ रहा होगा।

और अब अगला गीत आप सुनेंगे पेइंग गेस्ट फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत से संवारा है सचिन देव बर्मन ने, आवाज किशोर कुमार और आशा भोसले की है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।

महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

नाटे और लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल थे और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आप सुनेंगे रानी रूपमती फिल्म से, गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में है। भरत व्यास ने गीत को लिखा है और धुन तैयार की है SN त्रिपाठी ने।

अगला गीत आप सुनेंगे काला पानी फिल्म से। ये गीत आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ है। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

0: दोस्तों, बहुत बार अपनों के आगे हम लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे अपने हैं और उनको जिताने में, यानी सामने वाले को जिताने में हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और हम भी यही चाहेंगे कि कई बार आप अपनों को मनाने के लिए, अगर कोई आपसे रूठ जाता है तो उसे मनाने के लिए कई बार हार भी जाए, तो यहाँ हार मत सोचिएगा, क्योंकि रिश्ते को बरकरार रखने में ही भलाई होती है। तो इसलिए जहाँ कोई रूठे वो भी अपना, तो उसे मनाने की कोशिश कीजिए और झूठ मूठ हार जाने में कोई बुराई नहीं।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई,

और दोस्तों, ऐसी मुलाकातें ही हमारे लिए, एक दूसरे के लिए कब प्यार बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। और ये छोटी मुलाकातें जरूर आपसे भी हमें मिलवाएंगी। और आप जरूर बताइएगा कि आपको गीत कैसे लगते हैं सुनने पर। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा आज का हमराही कार्यक्रम अब संपन्न होता है। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा FM गोल्ड चैनल पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण गंतव्यों को जोड़ेगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि नई ट्रेन सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। भारत की प्रमुख उर्वरक उत्पादक किसान सहकारी संस्था कृषि भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको ने वित्त वर्ष 2025-26 में 824 करोड़ रुपए से अधिक का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है। नई दिल्ली में आयोजित क्रिबको की वार्षिक आम बैठक में प्रबंध निदेशक एसएस यादव ने कहा कि क्रिबको और उसकी सहायक कंपनियों ने उत्पादन और परिचालन दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवीनमुष्कों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस वर्ष पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी में प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। इसमें राज्य की भक्ति परंपरा, हस्तशिल्प, चित्रकला, वस्त्र और साहित्य की विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियां शामिल है। नीलामी सूची में ओडिशा के कई पारंपरिक हस्तशिल्प भी शामिल है। इनमें कटक की चांदनी की फिलीग्री या तारकशी कला तथा संबलपुरी वस्त्र और इक्कत प्रमुख है। पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन जारी है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में सर्दियों के दौरान डाक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अनूठी पहल शुरू की गई है। भारी बर्फबारी से सड़कें बंद होने पर अब ड्रोन के जरिए दूरदराज के डाकघरों तक डाक पहुंचाई जाएगी। जापान एशिया खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरजीत सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एल गोवेन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमारे दोस्तों ने ट्यून कर लिया है एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और कार्यक्रम अरुणिमा, इस कार्यक्रम में सभी दोस्तों को वंदना चुक की सुप्रभात और गीतों के साथ स्वागत है आप सभी का।

छोटी सी बात फिल्म से ये गीत था येसुदास और आशा भोसले का गाया हुआ, योगेश का लिखा गीत था और सलिल चौधरी की बनाई हुई धुन। अगला गीत आप सुनेंगे आस का पंछी फिल्म से सुबीर सेन का गाया हुआ है। हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने।

0: आकाश का पंछी।
1: दोस्तों, इंसान बहुत सारी आस यानी उम्मीदें जीवन में लगा के रखता है और जीवन भर उन उम्मीदों को पूरा करने में लग जाता है। फिर जो पूरी हो जाती हैं वही उसे खुशी महसूस होती है और फिर और उम्मीदें जगती रहती हैं।

दोस्तों, हम तो यही चाहते हैं कि आपकी उमंगें भी ऐसे ही पतंग की तरह बहुत ऊंची उड़ती जाएं और उन उमंगों को आप जरूर पूरा करें। भाभी फिल्म से ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और चित्रगुप्त का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे लावारिस फिल्म से, अनजान के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आवाज किशोर कुमार की।

दोस्तों, ये पंक्तियां इंसान के मन में तब आती हैं जब वो हर तरफ से निराश और हताश हो जाता है और अपनी डोर ऊपर वाले को सौंप देता है।

मशाल फिल्म से ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। जावेद अख्तर ने गीत को लिखा था और धुन तैयार की थी हृदयनाथ मंगेशकर ने। जमाने को दिखाना है, लेकिन क्या दिखाना है, सुन लेते हैं इस गीत के माध्यम से। पद्मनी कोल्हापुरी, ऋषि कपूर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले का गाया ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और आर डी बर्मन का संगीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

सरगम फिल्म से अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ, आनंद बख्शी की रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे पिया का घर फिल्म से, किशोर कुमार का गाया हुआ, आनंद बख्शी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियां हैं, दोस्तों वाक्य में ही ये जीवन उतार चढ़ाव का ही तो नाम है। और जिसने जिंदगी को हंसते हुए बिता लिया, वो सारी मुश्किलों से, मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ जाता है।

दोस्तों, जैसे जैसे सुबह होती है, सूरज की किरणें दिखती हैं और सूर्य की लालिमा देखती है, वैसे ही हमारे अंदर सकारात्मकता भी आने लगती है और इस जीवन को भी हमें सकारात्मक रूप से ही जीना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी ना जाने कितनी है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में अपने रिश्तों से अच्छे से मिलें जब भी मिलें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं।

0: इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यवहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर समूचे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2,532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये नई रेल सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का एक और विकल्प प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। भारत की प्रमुख उर्वरक उत्पादक किसान सहकारी संस्था कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको ने वित्त वर्ष 2025-26 में 824 करोड़ रुपए से अधिक का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है। नई दिल्ली में आयोजित क्रिबको की वार्षिक आम बैठक में प्रबंध निदेशक SS यादव ने कहा कि क्रिबको और उसकी सहायक कंपनियों ने उत्पादन और परिचालन दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखा है। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी चीजें PM स्मृति चिन्ह ई नीलामी में प्रमुख आकर्षण बनी हुई हैं। इसमें राज्य की भक्ति परंपरा, हस्तशिल्प, चित्रकला, वस्त्र और साहित्यिक विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियां शामिल हैं। नीलामी सूची में ओडिशा के कई पारंपरिक हस्तशिल्प भी शामिल हैं। इनमें कटक की चांदी की फिलिग्री या तराक्षी वाली तथा संबलपुरी वस्त्र प्रमुख हैं। PM स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन जारी है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। उधर हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में सर्दियों के दौरान डाक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। भारी बर्फबारी से सड़कें बंद होने पर अब ड्रोन के माध्यम से दूर दराज के डाकघरों तक डाक पहुंचाई जाएगी। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction yesterday with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi

नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। भोर सुहानी कार्यक्रम में गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चौक।

महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में आपने ये भक्ति रचना सुनी। संतोष आनंद की लिखी रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अगली रचना इम्तिहान फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी ने इस रचना को लिखा है और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।